0: There, the Nepal police divers, they have gone there to fetch the bodies, and then these bodies will be handed over to those relatives. Sir, ये ये आप सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं समझाइए आपकी ऑर्गेनाइजेशन.
1: हम यहाँ जो डेड बॉडी मिलेगा उस डेड बॉडी के कलेक्शन करके भेजने के लिए आए हैं.

0: वो बहाव तो ले आके जाता है, जो पानी से बगाएगा उसे ही ले आएगा इसे।
1: हम इस वक्त नेपाल के निर्मलधारा इलाके में हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ स्थानीय हैं जो ऊपरी इलाकों में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पहुँचे हैं, अपने घरों को छोड़कर। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आज भी बोला ना बाढ़ आएगा, इसलिए आप लोग यहाँ से निकल जाओ। ये आप लोग को बोला गया, अनाउंसमेंट हुआ था, बोला गया था
2: बाढ़ आएगा, वहाँ से फिर
1: पानी आएगा, चीन से
2: पानी आएगा, अनि बस्नु डर भएर अनि आफ्नो जिउको सुरक्षा हुन्छ भनेर जान लाग्यो।
1: सुरक्षा के लिए आप लोग अब अनाउंसमेंट हुआ था बाढ़ के,
3: सुनाया था,
1: क्या बोला था?
3: बारिश है,
4: बारिश आ रहा है ऐसा बोला है।
5: अभी थोड़ा बंद करके आता है क्योंकि वो लोग बोल रहा था, मैसेज में भी था वो, अभी एक से तीन तक बार फिर आएगा वो ऐसे बोल रहा था वो लोग।
1: इन सभी लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि इन्हें कब तक यहाँ इस तरह बैठना है, बट इतना ज़रूर है जो लगातार हिदायत दी जा रही है, सलाह दी जा रही है और अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं सरकार की तरफ से कि सब ऊपरी इलाकों में रहें और अगले अनाउंसमेंट का इंतज़ार करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो तब तक इन्होंने फैसला लिया है कि वो इसी तरह ऊपरी इलाकों में बैठे रहेंगे।
6: But moving on to breaking news from the national capital, we're learning the CNG price has been hiked by ₹3.89 per kg. That's right, CNG will now cost about ₹86.98 per kg in the national capital. Delhi CNG rates have now been revised from 6 a.m. today, so they are currently in effect. In fact, the rates have now changed from 83.09 earlier to about 86.98 per kg now. An important update coming in. In fact, this is an important update for, of course, all those residing in the Delhi, in, of course, the National Capital Region, where we're learning that the CNG price has now been hiked by ₹3.89. My colleague Anushka has been tracking the situation from ground for us, now joins us on the broadcast. Anushka, if I understand this correctly, now the CNG prices in the National Capital have now been hiked, and in the hike rates will now be applicable from 6 a.m. this morning. If you could just walk us through the details.
7: Well, that's right, Reed. The CNG prices has been hiked in Delhi by ₹3.89 per kg. We're at Pragati Maidan near a CNG pump. We're showing you the visuals of the current prices that can be seen reflected on the petrol pump. We can clearly see that the price has in fact been hiked by ₹3.89. Earlier, the petrol used to cost 83.09 per kg, but now the cost has soared up to 86.98 per kg. Now remember, CNG is mostly used in private cars, autos, taxis and other public transport, clearly pinching the pockets of the common people here. We'll try to speak to some more people here who are here to get their tanks filled. Sir, aapka naam kya hai? Sir, aapka naam kya hai?
8: Mera naam Ashish hai.
7: Sir, hum dekh rahe hain ki 3 rupaye badha diye gaye hain CNG ke daamon mein. Kitni dikkat ho rahi hai isse?
8: Bahut zyada dikkat ho rahi hai aur CNG mein biogas bhi milke aa rahi hai. Ji.
7: त्योहारों का समय है और इस तरीके से दाम का बढ़ना कितना मुश्किल है?
8: अब ये तो क्या है, सरकार में ऐसा ही है, सब हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, प्योर भी नहीं दे रहे, बायोगैस मिला के दे रहे हैं, बहुत परेशानी होती है।
7: So clearly we can see that the West Asia crisis has been cited as the reason behind the price hike at the CNG pumps here. Despite this, IGL has in fact gone on to say that among all the countries that import LNG gases in the world, Delhi still remains the cheapest option for people here. We'll speak to some more people. Sir, aapka naam kya hai?
9: Dhuru Pathak.
7: Sir, hum dekh rahe hain CNG ke daam 3 rupaye aur badha diye hain. Kitni
9: percent? 4 rupaye badha hai.
7: कितनी दिक्कत हो रही है इससे?
9: हाँ जी,
7: कितनी दिक्कत हो रही है इससे?
9: दिक्कत तो इतना हो रही है कि दिल्ली के पैसा दिल्ली में ही रह जा रहा है, बच्चे को खाने के लिए नहीं मिलता है, सारे दिन सुबह शाम तक एक करते हैं, और सीएनजी वाले के दे दो, गाड़ी मालिक के दे दो, सरकार के इस पर कोई
7: क्या कहेंगे? अब
10: किराए की गाड़ी चला रहे, 500 रुपये भाड़ा हो गया, 500 रुपये सीएनजी हो गया, 1000 रुपये पूरे दिन में कमाते, क्या बचाएंगे, क्या अपने को खुद खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, बताओ।
7: Clearly, people are quite frustrated given the price rise that can be seen here at the CNG pumps. We have seen that at other places also the CNG prices in fact remains the same, but in Delhi the price has in fact been hiked. So the revised price hike has in fact been implemented by 6 a.m. today morning. We're showing you the visuals of the long line that can be seen at the petrol, CNG pumps here. We have seen that according to the company, while international gas benchmarks doubled over recent months, retail prices in Delhi experienced experienced only a minor single digit percentage increase. Delhi CNG rose gradually from 77.09 per kg to 83.09 per kg, representing a modest 7.8% increase.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: questioning what the BJP government is doing in the national capital. He's even, in fact, named the LG, saying that there are more than 4 to 5 people who are responsible for taking care of the national capital, yet we are seeing such incidents. So an important update coming in right there. My colleague Anushka is still with us on the broadcast. You know, Anushka, of course, this incident is raising eyebrows all across. Even people from the political spectrum are now commenting on it to say that this is a very devastating incident that has come to the fore and a probe must be conducted at the earliest.
1: Well, that's right, Reet. We are seeing yet another, you know, news of the civic apathy that can be seen in Delhi NCR. In Jasola Vihar, we had seen a boy had in fact drowned and was in fact, you know, he in fact fell into the drain and his body was found almost 3 days later. We are showing the visuals from the very place where this incident has in fact taken place. This is the Surajmal Vihar area. Now, if somebody looks at it on a normal day, it can never come to somebody's mind that this pole can electrocute people. According to locals who are living here, they said that they had raised this complaint multiple times. They had spoken to the junior engineer and multiple times had raised this issue that this pole is completely tilted, there is no street light and anyone can fall into the very pit that the viewers can see on screen. I'll request my camera person to in fact show the pit in where the 28-year-old man named Sandeep was in fact stuck. This is the very place where his foot got stuck and then he in fact touched the pole, after which he got electrocuted, and according to the post-mortem report, he died of electrocution. Such stories coming from the national capital is in fact raising eyebrows all across the political spectrum, as in how this kind of a civic apathy can still be seen in the national capital. Over to you.
0: Absolutely, Anushka. You know, stay on with us on the broadcast. We also have a reaction coming in from Mr. Kuldeep Kumar of the Aam Aadmi Party. He's an MLA. Now, Kuldeep ji, main aapse ye puchna chahti hu, ek bahut dardnak ghatna hai jo aayi hai hamare samne, jisme hum ye jaan rahe hain ki ek 28 saal ke ek yuva ki maut ho gayi hai ek pole ko chhu ke, jisme ek live wire bhi present thi. Is par aapka kya kehna hai? Abhi hi discussion is pe chal rahi hai. Humne Congress se bhi suna hai jisme wo BJP ko iske liye doshi thehra rahe hain.
2: Dekhiye, ye Delhi mein pehli ghatna nahi hai. और ये बहुत दुखद घटना है कि आप सोचो कि दिल्ली देश की राजधानी के अंदर एक व्यक्ति पहले सरकार के खोदे गड्ढे में गिरता है, गड्ढे से बचने के लिए जब वो खंभे को पकड़ता है तो वो खंभा भी सरकार का है और उस खंभे को पकड़ के उसको करंट लग जाए, उसकी डेथ हो जाती है. अगर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? अगर वो सड़क पे निकलता है तो गड्ढे है, गाड़ी लेके चलता है तो रोड पे जाम है, जल भराव है, जल भराव से बचता है, पुल को पकड़ता है उसमें करंट है. तो आज सरकार ने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, लोगों की जान जा रही है, सरकार लापरवाह हो चुकी है. चाहे वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हो, परवेश वर्मा हो, उन्हें लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें लोगों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है. आप देखिए कि उस व्यक्ति की इसकी जान गई है, उसकी क्या गलती थी, उसका क्या गुनाह था? आप बताइए, अपने घर से अपना बैग लेके जा रहा है और उसका कैसे उसका पैर उसके गड्ढे में गिरता है और पोल पकड़ने से डेथ हो जाती है. मतलब रोड के किनारे लगे पीडब्ल्यूडी के पोल अब जानलेवा बन चुके हैं, कातिल पोल बन चुके हैं वो, तो उनसे क्या कार्रवाई होगी? लेकिन आज जो सरकार आग बूझ के बैठी है, भाजपा की सरकार, उसके चार इंजन ने दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया 18 महीने के अंदर. और दिल्ली में जगह जगह जल भराव, दिल्ली में जगह जगह पोल्स में करंट, दिल्ली के रोड खुदे हुए हैं सारे के सारे और सरकार का कोई भी ध्यान उनकी तरफ नहीं है.
0: जी सर, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस. दैट वाज ऑफ कोर्स, यू नो, एन एमएलए फ्रॉम द आम आदमी पार्टी आल्सो लॉन्चिंग अ स्केथिंग अटैक ऑन द दिल्ली गवर्नमेंट. रिमेंबर द कांग्रेस एंड द आम आदमी पार्टी हैव हिट आउट एट द गवर्नमेंट ओवर द इंसिडेंट दैट इज टेकिंग प्लेस एंड इज इन फैक्ट टेकन द लाइफ ऑफ अ 28-year-old मैन. Alright, moving on to more updates coming in at this hour. Now, Sonia Gandhi's memoir Belonging has hit a major publishing hurdle, with Penguin India saying it will not publish the book. According to sources in the Congress party, the objection centers around three sensitive themes: China's border incursions, Prime Minister Modi's policies and RSS's political influence. Congress party's Ashok Gehlot has now called the episode a murder of democracy and questioned why the truth should be hidden from Indians. Official Keralam Congress and the NSUI handles have posted posters taking a dig at Penguin India, alleging that the publisher caved under pressure. But Penguin India has in fact a different version, a different answer to this, saying that fact-checking is a normal part of the publishing process and that it remained willing and even keen to publish the book. Meanwhile, BJP has slammed Congress and said that they are spreading false narratives of fear.
3: Author Sonia ji, जिसका जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ 10 नवंबर को वो प्रकाशित होगी पुस्तक, पूरे देश के अंदर एक इंतज़ार होना लग गया कब पुस्तक आएगी. अचानक ये खबर आई जिससे बहुत सबको धक्का लगा कि पेंजिन इंडिया का जो पेरेंट कंपनी है वर्ल्ड वाइड, वो तैयार है छापने के लिए पुस्तक को। तो क्या कारण है कि इंडिया का जो उनका ऑफिस है वो इंडिया में छापने के लिए तैयार नहीं है? सोनिया जी जो लेखक है उनसे पूछा गया कि हम कुछ अंश हटाना चाहते हैं, वो कैसे स्वीकार करती, मना कर दिया उन्होंने। मुख्य बात यह है अब जो है, क्योंकि चाइना के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, आरएसएस पे कुछ कमेंट होंगे उसके अंदर, इसलिए इनको तकलीफ हुई होगी। तो कहाँ डेमोक्रेसी रही फिर?
4: नहीं, बीजेपी अटैकिंग मोड में, बीजेपी का क्या इससे लेना देना? कोई बुक अगर लिख रहा हो, सोनिया जी अगर लिखी हैं तो अपनी भावना ही उसमें लिखेंगी, जिंदगी का जो उनका कहानी होगा उसी के बारे में लिखेंगी। ना कोई प्रकाशक को मना करना चाहिए नहीं, और ये लोग हो सकता है बीजेपी के दबाव में पेंगुइन हो, जैसा नरावने वाले केस में हुआ हो, तो इस वजह से भी हो सकता है उन लोगों ने मना किया हो।
5: वेल, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बोइंग डाउन, इट्स अ मैटर ऑफ शेम, ग्रेट शेम, दैट इवन इन राइटिंग अ बुक, ऑफ कोर्स इट इज बीइंग रिटन बाय समवन एल्स, यू आर नॉट प्लेसिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड दैट्स व्हाई द पब्लिशर्स आर नॉट रेडी टू पब्लिश इट, बिकॉज द वेरिफिकेशन हैज़ टू बी डन, द क्रेडिबिलिटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड ऑफ द पब्लिशर। सो सैड।
6: कांग्रेस लीडर्स attempting to spin stories and manufacturing a false narrative of fear over the release of Srimati Sonia Gandhi's memoir are not merely ironic, they are just glaringly hypocritical. Excerpt enough of late Shri K. Natwar Singh ji very clearly states how the Congress first family was extremely uncomfortable and uneasy about his accounts of certain events which had happened in May 2004, just before the UPA government was sworn in. So much so that Srimati Sonia Gandhi and Srimati Priyanka Gandhi Vadra decided to meet Natwar Singh ji and discuss with him about what he was going to write in the book.
0: Well, with that, we're slipping to a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way.
6: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. Sehatmand, har roz.
2: Three decades of watching the world change.

0: रेणुका?
1: हाँ, बहुत कम लोगों को मिलता है। वो भी बाहर जाने का दिन आ चुका है।
2: What Basant is doing today is a story for everyone to know as a brother and what a brother can do for his sister. सिर्फ आप हैं जिन्होंने उनके चेहरे पे ये मुस्कान लाई है, लेकिन इस परिस्थिति में आपकी क्या हालत हो रही है?
3: हम लोगों ने अब ये जो फ्लड है, किसी ने भी इतना बड़ा तबाही मचाएगा हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था। अब इस तो देखता खेरी लाइक इन सीइंग आवरसेल्फ इन दिस कंडीशंस वी कैन नाइदर शेड आवर टीयर्स नॉर ऑफ कोर्स वी कैन नॉट बी हैप्पी एनीमोर।
2: अपनी बहन को क्या कहेंगे आप? बहुत आपको देखकर अभी रो रही थी और आपको देख के मुस्कुराने लगी।
3: बहुत स्ट्रांग है। शी वॉज लिविंग हेयर अलोन एंड जब ये फ्लड आया था तब वो यहीं थी। मेरी भांजियाँ, दो भांजियाँ वो स्कूल पर थी।
2: आपने कभी सोचा था रक्षाबंधन के दिन आप अपनी बहन के घर ऐसे आएंगे?
3: नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा। तो कोई भी नहीं, कोई भी भाई अपनी बहन को इस सिचुएशन में नहीं देखना चाहेगा ना।
2: आपके भाई आपके साथ हैं यहाँ पर और रक्षाबंधन पर इस तरह की स्थिति में रहना, कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कभी भी कोई अपने रक्षाबंधन पर अपनी बहन के यहाँ ना आए, क्या कहोगे आप?
1: कहने के लिए कुछ नहीं है, और सी नहीं है।
2: क्या सूख गए हैं ना पूरे?
1: हाँ
2: है ना,
1: सूख गए।
2: The Devi Ghat area is just another witness to the massive tragedy in Nepal. As I'm here at one of those houses and godowns which existed with a property of worth crores, not just as the storage house but also a living accommodation for 71-year-old Govind Prasad Dahal. Govind ji, kya halat hui hai ghar ki abhi?
4: Kya bole? Ghar ka halat to khatam ho gaya. Mere dhar nikal na paaye bhane. जनताले बाँड दिन्छु बरु।
2: कैसे भागे थे? कैसी तकलीफ नहीं हो रही है देखकर अपना घर को आपको? अपने घर को देखकर क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ये हालत है घर की?
4: ये कौन दूसरा घर? दूसरा मंजिल बारह मंजिल का घर है। ये बारह का घर है ना? आपका घर नहीं होगा।
2: वो भी तो नहीं बचा। आपके हाथ में चप्पल है, यही कपड़ा, कुछ और सामान है?
5: कुछ और बचा नहीं?
2: As tears roll down the eyes of Govind Prasad Dahal at 71, almost everything that he had earned all his life is just no more. All that remains is debris, not just in his godown but also his house just down the lane in Devi Ghat area of Nepal. To understand the tragedy and the way it has struck millions, almost taking away everything from them that they had earned, saved and dreamt as a life that would be in days to come.
6: After Nepal's devastating flood, Nepali army is trying to search some dead bodies near the banks of Trishuli River. I am here in Dharing and you can see the visuals in the morning when Nepali army rescuers, they are searching the nearby areas to Trishuli Nadi, Trishuli River, and these rescuers, they are trying to find some dead bodies which may be trapped in the trees which are flown in the river water on Wednesday when the water level rised up to 20 to 30 feet. This is Trishuli River and I'll show you some more footages. A bridge which was here on the Trishuli River is half demolished, is half collapsed on Wednesday when the flood water came in this area. So this is the debris which is silt, which came from the Trishuli River, and nearby areas, the Nepali army rescuers, they are trying to search some dead bodies. Till now, more than 550 dead bodies have been recovered, and probability is many more dead bodies may be trapped inside the debris or the nearby areas. So that's why they are trying to locate some dead bodies here in Dharing as well as all disturbed area in Nepal flood.
7: आपके आसपास के पड़ोसी सब चले गए ऊपर, तभी आप क्यों नहीं जा रहे हो?
1: सब
0: कब चल्यो म बड बुढा छ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।

0: 1984 anti-Sikh riots petitioner H.S. Fulka has strongly condemned the visit by the BJP MPs, who were Kamaljeet Sharawat, Ramveer Singh Bidhuri, and even Yogendra Chandolia. Now, H.S. Fulka has said that the BJP has always supported the victims' fight for justice and has questioned the decision of the three BJP MPs to offer condolences to Sajjan Kumar, who is a convict in the case. He has also called for a boycott of the three MPs, saying that sympathy should not be there and it should instead be reserved for the victims and their families.
1: फुलका जी ने कहा मैं भी उससे हामी भरता हूं क्योंकि अवॉइड करना चाहिए था. हालांकि ये तीनों लोग अपने निजी तौर पर गए क्योंकि एक बड़ी लोकसभा में से तीनों की लोकसभा कार्विन हुई है. तीनों की लोकसभा ओनली एक बड़ी लोकसभा से कटकर निकली है जिसमें सज्जन कुमार पहले सांसद थे. एक पड़ोसी होने के नाते से शायद ये तीनों लोग गए, परंतु याद करना चाहिए कि सज्जन कुमार वो था जिसने 84 के अंदर तीन सिखों को कत्ल किया था और सजा उनको मिली हुई है.
2: एंड ऑल दिस हैपेंड बट व्हाट हैपेंड रिसेंटली बाय बीजेपी इन दिल्ली वेयर द पुलिस ऑफिसर्स डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल कमिश्नर हेडेड बाय द होम मिनिस्टर वॉज यूजिंग पैलेट गन्स. इन बिहार बीजेपी गवर्नमेंट इज यूजिंग AK-47. द वे आर यंग रिपोर्टर फ्रेंड्स Young friends in Janta Mata were smashed badly by BJP. And the same Sikh community, when they came to Delhi protesting against the three black rules that the BJP government got, the BJP government called them Khalistani. But the sad part is, we are not talking about what's happening today. Why don't we question the Home Minister? The AK-47 that was used over kids.
3: देखिए, सज्जन कुमार जी अदालत की तरफ से दोषी ठहराए गए थे सिख कत्लेआम के बारे में जो 1984 में हुआ. कांग्रेस का उसमें क्या रोल रहा वो किसी से छिपा हुआ नहीं है. जब सज्जन कुमार जी की मृत्यु हुई तो उसके ऊपर दीपेंदर हुडा जी ने क्या बोला वो जब सामने आया तो बीजेपी वाले भी बोल रहे थे. अब बीजेपी के तीन सांसद जो हैं वो उनके घर पर जाके आए हैं. क्वेश्चन ये है कि अब नितिन नवीन जी इस मामले में क्या बोलेंगे और भाजपा जो ये कह रही है कि पंजाब में उसने अपनी अगली सरकार बनानी है उसके जो प्रेसिडेंट यहाँ पंजाब में है केवल ढिल्लों जी. वैसे तो बीजेपी पंजाब में मैक्सिमम कांग्रेस भरी हुई है, वो कांग्रेस ही विंग है भाजपा में, वो क्या बोलेंगे. लेकिन जो टकसाली भाजपा ही है वो भी इसके ऊपर एक वर्ड भी नहीं बोल रहे कि उनका क्या स्टैंड है इसके ऊपर.
0: Moving across and getting your stories that are making headlines in the state of Karnataka. Karnataka's political corridors are buzzing. This is after Karnataka Minister B. Nagendra's exit. Now, two cabinet vacancies are now up for the grabs. The big question is, who steps in? B. Nagendra broke down yesterday while announcing his resignation, but insisted that his exit was a personal decision, rejecting the scam allegations. He has also accused the BJP and the JDS of political targeting against him. And while the BJP has said that Nagendra was made a scapegoat but welcomed his exit, the BJP claims that Nagendra was made the scapegoat but they have welcomed his decision to step down. Congress MLA TB Jayachandra has now hit out at the cabinet expansion, saying it does not look like a Congress government, but an all-party government, citing lack of experience and ability as well. Now, with two berths in play, the race for the next ministers has only intensified. Here's a look at what B. Nagendra has to say on his resignation.
4: Sir, if you could tell us, was anything communicated from the High Command to you, sir? You
5: no, no, take no, no. decision? I take my own decision.
4: Okay.
6: Issue na itkonda avaru ivattu aa padayatrana maadkondu hontidaralla idu nijavaglu namma janakke namma adi uttar karnataka bhagadalli namma janakke mugdha janrige ivattu yenu idiralli hagarana agide ant heli ondu sullannu bitslikke tav prarambha maadidaralla idu nijavaglu namma ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಒಂದು ಮನುವಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರದು, ಒಬ್ಬ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಬಾರದು,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज
3: देखिए नेविगेट मी टू द नेशनल आर्चरी क्लब व्हाट टाइम इज द मेडल सेरेमनी
4: द मेडल सेरेमनी बिगिंस एट 6:30 PM
5: लाइव जेन AI इन द किया सोरेंटो थॉटफुल इंटेलिजेंस फॉर द मोमेंट्स दैट मैटर
6: किया मूवमेंट दैट इंस्पायर्स
2: 3 डेकेड्स ऑफ वाचिंग द वर्ल्ड चेंज Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. Meetha. या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
1: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.

0: Let's in fact also tell our viewers about how there is a political controversy that's just brewing over it, where Rahul Gandhi has now hit out at the BJP and RSS over purification ritual that was conducted at the venue after Congress President Mallikarjun Kharge had delivered his speech. Now, Rahul Gandhi has demanded that an FIR will be registered against the SCST Act. He's also targeted the Prime Minister over the issue, questioning the BJP's leadership response to the alleged ritual. He's added that it is the duty of both the state government and the central government to ensure that Kharge ji receives the justice he deserves इन उत्तराखंड।
1: जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।
2: खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहां पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहां पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को कि खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड बना दिया है, ये खड़गे जी इस हिसाब से समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ है वो होना नहीं चाहिए।
3: मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मंशा नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
0: And moving on to the other big stories that are following, Sonia Gandhi's memoir Belonging has hit a major publishing hurdle, with Penguin India saying it will not publish the book. According to Congress sources, the objection centered on three sensitive themes: China's border incursions, Prime Minister Modi's policy, and RSS's political influence. Congress's Ashok Gehlot has called the episode a murder of democracy and questioned as to why the truth should be hidden from Indians. Official Kerala Congress and NSCY handles have posted posters taking a dig at Penguin India, alleging the publisher caved under pressure, but Penguin has a different version, saying that fact-checking is a normal part of the publishing process and that it remained willing and keen to publish the book. Meanwhile, the BJP has slammed the Congress and said that they are spreading false narratives of fear.
4: Penguin India ne jis prakar se achanak hi ek author Sonia ji जिसका जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ 10 नवंबर को वो प्रकाशित होगी पुस्तक, पूरे देश के अंदर एक इंतज़ार होने लग गया कब पुस्तक आएगी। अचानक ये खबर आई जिससे बहुत सबको धक्का लगा कि पेंजिन इंडिया का जो पेरेंट कंपनी है वर्ल्ड वाइड वो तैयार छापने के लिए पुस्तक को, तो क्या कारण है कि इंडिया का जो उनका ऑफिस है वो इंडिया में छापने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनको दबाव है?
5: लेखक और प्रकाशक के बीच में कहीं किसी तरह का अंतर विरोध हो, प्रकाशक का अपना प्रेरोगेटिव है, लेखक का अपना व्यू पॉइंट है, मुझे लगता है उसको राजनीति में लाने के बजाय प्रकाशक ही वही प्रकाशक किसी और को ढूंढ लेते, इसको राजनीति भारत सरकार को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है।
0: Breaking news just coming in, Kolkata police has filed an FIR against Mamata Banerjee, the ex-West Bengal chief minister. She's been booked for flouting the High Court order. The police has booked Mamata Banerjee for criminal conspiracy as well. The case has been recorded on the basis of a letter of complaint in which the alleged ex-chief minister of West Bengal, Mamata Banerjee, along with the organizers of West Bengal Trinamool Chhatra Parishad, entered into a criminal conspiracy in pursuant to the same. Shreyashi is joining us on the broadcast. Shreyashi, what is the case all about? Share more details. Well, yesterday there was a Trinamool Congress student wing rally in Kolkata after a high court permission was granted for it, with limited number of supporters and a time-bound way of completing the rally. Pardon me. And also just one flank of the Cathedral Road in Kolkata that could be utilized for the rally here in the city. But the Kolkata police alleges that Mamata Banerjee has indulged in criminal conspiracy, overturning the barricades and not listening to the Calcutta High Court order, flouting those rules that were set by the Calcutta High Court. And thus, an FIR has been filed by the Kolkata police against the former Chief Minister of West Bengal. Because of the chaos that unfolded during the Trinamool Congress rally in Kolkata yesterday, despite the High Court guidelines that were set for the party. Back to you. All right, Shreyashri, thank you very much for getting us those details. Remains to be seen on what action will be taken. And while Mumbai is gearing up to welcome one of the most revered Ganesh idols, Chinchpokalicha Chintamani, this 107-year-old tradition has once again come alive as the idol, lovingly known as the remover of worries, has been unveiled as is now heading out for the workshop. Founded in 1920 in the heart of Mumbai's Mill District, Chintamani is deeply rooted in city's working class history and continues to hold a special place in the heart of generations of Mumbaikers.

0: क्लींजिंग।
1: जो ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं मुल्क भर में कि इन्हें वहाँ से किस तरह से निकाला गया, किन हालात में निकाला गया, हमें पता है कि कश्मीरी पंडित जब यहाँ से चले गए या उन्हें चलवाया गया, जो भी उस वक्त के हेलम ऑफ अफेयर्स में लोग थे उन्हें पता है कि उस वक्त की सिचुएशन को कैसे डील किया जा सकता था। और उस वक्त अगर ये लोग अपनी मर्जी से यहाँ चले गए हैं तो उनको स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में या बाकी किसी जगह से अगर इस तरह से ताने सुनने को मिलते हैं तो मुझे बड़ी अफसरदगी है। हमें आज भी इस बयान पर कायम दायम है कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन, जम्मू कश्मीर का माहौल कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है, नामुकम्मल है।
2: ये इस तरीके से किसी कौम, किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों की को उपहास के तौर पर दर्शाना ये निंदनीय है। आप अपने कॉमेडी के गुण का दुरुपयोग कर रहे हैं। कॉमेडी की भी एक सीमा होनी चाहिए, तो आप अपनी कॉमेडी का अस्त्र का उपयोग किसी बिहार को या किसी को और बिहारियों को अरे ये भी तो आप कह सकते हैं कॉमेडी में कि ये बिहारी हैं जिनकी वजह से सारे उत्तरी भारत तो छोड़िए दक्षिणी भारत में भी निर्माण कार्य खड़े हुए हैं है? ये वहाँ का श्रमिक है, उसको सैल्यूट किया जाना चाहिए। कश्मीर के लोग हमारे सिरमौर हैं है? हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति है, और तो आप उनका मजाक उड़ाएं तो ये उचित नहीं है। ये इस तरीके से किसी कौम, किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों की को उपहास के तौर पर दर्शाना ये निंदनीय है। आप अपने कॉमेडी के गुण का दुरुपयोग कर रहे हैं।
3: All right, Pradeep Datta is joining us on the broadcast. Pradeep, the condemnation is now just not from the Kashmiri pundits. In fact, it's from the political forums as well. The BJP, the Congress, and even the Kashmiri pundits now have all come out in condemnation together, uniting and saying that these kind of remarks are not to be said out in public forum and that comedians cannot hide behind the disguise of freedom of speech.
4: Yes, you're absolutely right. In fact, condemnation pouring from across the country. And once again, Samir Raina has landed in trouble because job of a good comedian is always to draw a line between derogatory remark and satire. And if you cross the line, you're bound to land in trouble. That's exactly what has happened with Samir Raina. He questioned the Bihari identity of the participant and the participant hit back at him, trying to mock and insult the pain of the Kashmiri pundits who had to abandon their hearths and homes in the early 90s because of Pak-sponsored terrorism. So that's one of the reasons that the people are questioning, especially the members from his own community. They are saying that you are the one from the Kashmiri Pandit community, you very well understand plight and pain of the community. How come you make a fun and of the pain and plight of the Kashmiri Hindus? And you, how come you mock at a hard-working Bihari community that is contributing not only economy but also development of the country? So you have no right and license to hit, mock out or insult any community. So that's why there is an anger, there is an ire, there is an agitation, and this is not first time he has landed in trouble. Earlier also there were several FIRs lodged against him. Finally he had apologized, but people feel that he had become a habitual offender. He always apologizes, gets away with the thing, but this time they want that he should be taught a lesson.
3: Right, absolutely. Thank you very much, Pradeep, for getting us those details. Let's talk about another controversy that's unfolding. Sonia Gandhi's memoir Belonging has hit a major publishing hurdle, with Penguin India saying it will not publish the book. According to Congress sources, the objection centers on three sensitive themes. Number one being China's border incursion, second being Prime Minister Modi's policy, and the third being RSS's political influence. Now, Congress's Ashok Gehlot has called the episode a murder of democracy and questioned as to why the truth should be hidden from Indians. Official Kerala Congress and NSCOI handles have posted posters taking a dig at Penguin in India, alleging that the publisher caved under pressure. But Penguin has a different version. They say that the fact-checking is a normal part of the publishing process and that it remained willing and keen to publish the book. Meanwhile, what's also happened is that the BJP has slammed the Congress and said that they are spreading false narratives of fear.
5: Penguin India ne jis prakar se achanak hi ek author Sonia ji, जिसका जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ 10 नवंबर को वो प्रकाशित होगी पुस्तक, पूरे देश के अंदर एक इंतज़ार होने लग गया कब पुस्तक आएगी। अचानक ये खबर आई से बहुत सबको धक्का लगा कि पेंजिन इंडिया का जो पेरेंट कंपनी है वर्ल्ड वाइड, वो तैयार है छापने के लिए पुस्तक को। तो क्या कारण है कि इंडिया का जो उनका ऑफिस है वो इंडिया में छापने के लिए तैयार नहीं है? कोई इनको दबाव है?
0: लेखक और प्रकाशक के बीच में कहीं किसी तरह का अंतर विरोध हो? प्रकाशक का अपना प्रेरोगेटिव है, लेखक का अपना व्यू पॉइंट है। मुझे लगता है उसको राजनीति में लाने के बजाय प्रकाशक ही वही प्रकाशक किसी और को ढूंढ लेते, इसको राजनीति भारत सरकार को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है?
3: Joining us on the broadcast for more details, Aishwarya, what is it that the Penguin Publishing Book House has released as a statement, and what is the way going forward now? Will the book be published finally, or is it going to go with some uncuts?
6: Well, there are hurdles amid the statement that are coming from Penguin India, but yes, after that statement, there has been fresh political war of words that erupted between the Bharatiya Janata Party and the Congress. It is the BJP leaders which have alleged that it is pressure from the Congress, perhaps had alleged that it is pressure from the government and threat to freedom of expression. The Bharatiya Janata Party on the other side categorically has challenged the claims and questioned the contents of the book. It is senior BJP leaders who have stated that whether the book written by Sonia Gandhi is a memoir or a fiction is a matter to be decided between the author and the publisher. And if a work is labeled as a memoir, then it turns out to be fiction. So it is up to the publisher and the author that has to be decided. And therefore, the reason perhaps now, it all depends on how the publisher wants to go ahead. But yes, fresh war of words over three flashpoints that have erupted on Sonia Gandhi's memoir.
3: All right, Aishwarya, thank you very much for getting us those details. Moving on, Rahul Gandhi has hit out at BJP and RSS over purification ritual conducted at venue after Congress President Mallikarjun Kharge has delivered his speech in Uttarakhand. Now, Rahul Gandhi has demanded that an FIR should be registered against the SCST Act. He's also targeted the Prime Minister over the issue, questioning that the BJP's leadership response to the alleged ritual is questionable. He added that it is the duty of both the state government and the central government to ensure that Kharge ji receives the justice in Uttarakhand.
7: जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।
8: खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहां पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहां पर गंदगी फैलाई जाती है, उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड बना दिया है, ये खड़गे जी इस हिसाब से समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ है वो होना नहीं चाहिए था।
9: चिंता कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जाहिर की कि किस तरीके से आज भी दलितों के साथ भेदभाव किए जाते हैं। उन्होंने कई उदाहरण भी देने का काम किया। आज भी अगर सामाजिक परिस्थिति बदली नहीं है, यकीनन ये चिंता तो हमारी सरकार के लिए है ही, और इसीलिए हम लोग अलग अलग विषयों पर मजबूती से अपने पक्ष को रखने की बात करते हैं।
3: With that, it's time for us to slip into a very quick commercial break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: people for publicity and calling for a ban. Bihar Education Minister Mithilesh Tiwari has also, in fact, said that these remarks were derogatory, divisive, against the dream of Akhand Bharat. Meanwhile, Congress also condemned the remarks of Samay Raina, saying comedy must have limits and mocking any community is inappropriate.
1: I mean, she's from Bihar and she's so Bihari, she thinks Ebola means someone said something.
2: Samay is so Kashmiri, he loves getting stoned.
1: This is why you are the judge now, yaar. Kya baat hai? You know, Sharon Verma is a Bihari who came to Mumbai in search of a job. Just Bihari things.
2: At least I left my state by my choice.
1: Kya baat hai, yaar. What a... Hilarious.
3: Show me. ये जबान इस्तेमाल की गई है, ये निंदनीय है, ये काबिल एतराज है, ये किसी भी स्रोत में एक्सेप्ट नहीं है। देखिए कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी पंडित सदियों से जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में रह रहा और इस तरह से पाकिस्तान की साजिश का शिकार हुआ, जानबूझकर उनको निकाला गया और एक खास सिस्टम यहाँ अडाप्ट कराने की कोशिश की गई, उसका जो मारा कश्मीरी पंडित है, वो कश्मीरी पंडित आज भी बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसकी उस बेबसी और उसका जो पलायन हुआ, उस पलायन को फिर मजाक कहना या उस पर तनज करना, मैं नहीं समझता हूँ भारत में ऐसे लोगों के लिए कोई एहतराम या रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। जिसने भी ये बॉर्ड कहे, शरू ने जो बॉर्ड कहे, उनको ये अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए।
4: ये इस तरीके से किसी कौम, किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों की को उपहास के तौर पर दर्शाना, ये निंदनीय है। आप अपने कॉमेडी के गुण का दुरुपयोग कर रहे हैं। कॉमेडी की भी एक सीमा होनी चाहिए। कश्मीर के लोग हमारे सिरमौर हैं, हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति है, और तो आप उनका मजाक उड़ाएं तो ये उचित नहीं है।
5: मैं समय और श्रवण मैडम को कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों की बात उतनी ही करनी चाहिए जिससे उनको फायदे की बात हो, कहीं पत्थरबाज ना कहलाया जाए या उनको इस किस्म का एक्टिविस्ट ना कहलाया जाए। हम मेन स्ट्रीम के रहने वाले लोग हैं।
6: अपने देश के किसी भी नागरिक पर कोई भी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर है, और जो लोग भी ये टिप्पणी करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं और हमारे लिए राजा और रंक दोनों बराबर है, और जाति और पंथ के आधार पे देश में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना।
0: Somewhere in the eye of the controversy, there is some breaking news coming in now. NCP Sharad Pawar's MLA Jitendra Awad has backed Rahul Gandhi's remarks on the alleged treatment of Congress President Mallikarjun Kharge in Uttarakhand, where a purification ritual was conducted soon after his address. NCP MLA Jitendra Awad termed the reported purification ritual as an insult to Mallikarjun Kharge and the wider Bahujan community, and demanded FIR against those responsible, calling it an example of Manuvadi mindset. This condemnable act, in fact, took place in Uttarakhand after the Congress president, who belongs from the SC community, had gone there for a program, and then later it was seen some people sitting there during this purification ritual.
7: Mallikarjun Kharge, ye dalit neta hai, ye pura desh janta. वो कांग्रेस के अध्यक्ष ठीक है, लेकिन किसी भी दलित के साथ ये व्यवहार होना, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का अपमान है। एक जगह पे खड़गे जी जाते हैं और बाद में वहाँ पे कुछ मनुवादी लोग जाके उसका वहाँ पे कुछ यज्ञ और कुछ अलग अलग शुद्धिकरण करते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस देश की छूत अछूत ये अभी तक बंद नहीं हुआ और इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार पे जाती है।
0: It's now day 4 of Nepal's flood rescue operations. The death toll has crossed

की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, लेकिन मुश्किल ये पूरी जर्नी है। कहा जा रहा है कि अभी और हमको 4 घंटे लगेंगे, हम ऑलरेडी 3 घंटे का सफर कर चुके हैं। और ये देखिए सड़कें कहीं टूटी हुई हैं, इतनी घुमावदार हैं, और 4-व्हील ड्राइव नहीं हो तो कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो तमाम चुनौतियों के साथ देखिए आगे रिलीफ की छोटी छोटी पिकअप वैन आगे जा रही हैं, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और जो क्लब्स हैं, यूथ क्लब्स हैं, वो इस

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
7: Across the country,
8: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
8: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड। Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आरती और मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
7: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: देखिए नेविगेट मी टू द नेशनल आर्चरी क्लब। व्हाट टाइम इज द मेडल सेरेमनी।
9: द मेडल सेरेमनी बिगिंस एट 6:30 PM.
10: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
11: Kia. Movement that inspires.

0: ये कहानी है एक लड़के की, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे इस लड़के की, जिसके पास था तो बस माता पिता का आशीर्वाद, जो 16 साल की उम्र में ही अहमदाबाद की गलियों से सीधा मुंबई की भीड़ में आ पहुंचा नौकरी की तलाश में। इसने हर ठोकर को आने वाली जीत की सीढ़ी में बदल दिया। एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस को भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम्स में बदल दिया। और अपनी इस सोच को हकीकत में बदलने वाले इस शख्सियत का नाम है गौतम अदाणी। गौतम अदाणी जी का हमेशा से विश्वास रहा है कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग हैं।
1: I have always believed that if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
0: गौतम अदाणी के इस एक काबिल सपने को देश ने अवसर दिया तो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिली। अब वे अपने जैसे अनेक काबिल सपनों को ग्रास रूट से उठाकर देश के निर्माता बनाना चाहते हैं। मजबूरियों और हालातों की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशना चाहते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने 24 जून को शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट, वंदे भारतम।

अपने विजन और मिशन की गंभीरता का प्रमाण देते हुए गौतम अदानी ने टाइम कैप्सूल में अपने कमिटमेंट की चिट्ठी रखी। कमिटमेंट है वंदे भारतम का, देश के ग्रास रूट के सपनों को करोड़ों की सहायता देने का और इस राष्ट्रीय धरोहर को पूरे वर्ष लगातार जारी रखने का। इसी लक्ष्य के साथ पोर्टल बना, कैटेगरीज बनी, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। 12 भाषाओं में चलाया गया ये कैंपेन गांव गांव तक पहुंचा। वंदे भारतम वैन ने कॉलेजों और स्कूलों से लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों को वंदे भारतम के मिशन से परिचित कराया। नेक इरादों को देश भर की लीडरशिप का भी समर्थन मिला। देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, कैबिनेट मिनिस्टर्स और वरिष्ठ अधिकारियों ने वंदे भारतम को सराहा। सोशल मीडिया पर वंदे भारतम के इंस्पायरिंग वीडियोस को 41 करोड़ से अधिक बार देखा गया और 82 करोड़ से अधिक इंप्रेशन आए। तभी तो एक महीने में ही 26,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई, वो भी इन विभिन्न कैटेगरीज में जो आज के भारत की हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। 4,000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स ने वीडियो पिचेस भेजी। एआई और मैनुअल इवैल्यूएशन के माध्यम से 26,000 में से 1,000 एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट हुई। इन 1,000 एप्लीकेशंस का हमारे मेंटर्स के बीच 10-10 मिनट के डिस्कशंस हुए, जिसके बाद 200 इनोवेटर्स चुने गए। IIT, IIM के प्रोफेसर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की 30-30 मिनट की कॉल्स के बाद सिलेक्टेड फाइनलिस्ट्स अहमदाबाद पहुंचे। 9 अगस्त को अहमदाबाद के शांतिग्राम में एक शानदार बूट कैंप आयोजित

0: ये रिस्पॉन्स सिर्फ एक टीवी शो की टीआरपी नहीं था, टीआरपी का हमारे लिए मतलब है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड प्राइड। 10 से 13 अगस्त के बीच वंदे भारतम का स्टेज इनोवेशन के स्टार्स से जगमगा उठा।
1: हम कंस्ट्रक्शन को फास्ट, बेटर और मोर सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं।
2: कर लो आसमान मुट्ठी में।
0: नए भारत की उद्यमिता के पहचान बने 20 दिग्गज मेंटर्स देने वाले हैं इस नई राष्ट्रीय धरोहर को आकार।
3: वो दिन यही है वंदे भारतम, वो दिन यही है वंदे भारतम।
0: इसी मंच से टॉप विनर्स को मिलेगी करोड़ों की प्राइज मनी और इसी मंच से होंगी करोड़ों की डील्स। साथ ही हमारी स्पेशल कैटेगरीज वुमेन, रूरल, दिव्यांग, सस्टेनेबल को दी जाएगी स्पेशल प्राइज मनी भी। आइए आत्मविश्वास के इस मंच से सपनों का टेक ऑफ करते हैं।
3: यही है वंदे भारतम,
0: वंदे भारतम,
3: यही है वंदे भारतम।
0: अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार इस बार, तो निराश ना होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, जुड़ो और पाओ योग्य निवेश, मेंटर या अडानी ग्रुप का सहयोग। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती हैं। और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है, तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइस। सभी पिचेस के अनप्लग्ड वर्शंस अब वंदे भारतम और NDTV के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आइए एक ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं हमारे एम्बेसडर और होस्ट राजीव खंडेलवाल के साथ, जो आज करेंगे इस 10 एपिसोड्स की शानदार सीरीज की शुभ शुरुआत।
4: आइडिया छोटा हो सकता है, पर सोच और जज्बा बड़ा होना चाहिए। और इसी इंस्पायरिंग सोच को सपोर्ट करने के लिए मैं आपका दोस्त राजीव खंडेलवाल लेकर आया हूँ वंदे भारतम, एन इनिशिएटिव बाय मिस्टर गौतम अदानी। एक ऐसा मंच जहाँ भारत के हर छोटे शहर, गांव, किचन और क्लासरूम से आने वाले बड़े सपनों को पहचान और उड़ान मिलेगी। एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ हमारे इनोवेटर्स तैयार हैं इस मंच पर अपने आइडियाज देश और मेंटोर्स के सामने रखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं इस शो का फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ। एक एक करके हमारे इनोवेटर्स आएंगे और अपना विजन और आस्क मेंटोर्स के सामने रखेंगे। अगर मेंटोर्स को इनोवेटर्स के बिजनेस या उनके आइडियाज में पोटेंशियल नजर आता है, तो वो हमारे इनोवेटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुभारंभ के इस लिफाफे के साथ यहीं से होगी एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत। अगर किसी इनोवेटर की पिच स्टोरी या उनका स्ट्रगल मेंटोर्स के दिल को छू जाता है, तो वो उन्हें दे सकते हैं हमारे वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी 10 डेज मेंटोरशिप विद अदानी ग्रुप। हर पिच के बाद हमारे मेंटोर्स इनोवेटर्स को अपना स्कोर देंगे और वो जाएंगे हमारे वंदे भारतम वॉल्ट में। महामंच यानी फिनाले एपिसोड में इन स्कोर्स के द्वारा हमें मिलेंगे हमारे टॉप 5 इनोवेटर्स, जिन्हें मिलेगा एक ग्रैंड कैश प्राइज।
3: वंदे भारतम, भारतम, वंदे भारतम।
4: आज वंदे भारतम के मंच पर इनोवेटर्स के साथ आएंगे मार्केट के वो दिग्गज जिनको गौतम अदानी जी ने खुद चुना है। आज अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ आए हैं हमारे इनोवेटर्स को इनकरेज करने के लिए। चलिए मैं आपको हमारे आज के मेंटोर से मिलवा देता हूँ। ये ज्योतिष शास्त्र को मानते नहीं थे, पर आज टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा संगम चला रहे हैं। प्लीज वेलकम द मैन हु रीरोट हिज ओन डेस्टिनी, फाउंडर एंड CEO ऑफ एस्ट्रोटॉक, मिस्टर पुनीत गुप्ता। हाय पुनीत, good to have you here. Please, have a seat.
5: Here.
4: जिन हाथों ने कभी बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स, ओला और बुक माई शो जैसे जायंट कंपनीज के फाइनेंस को संभाला, आज वही हाथ सैकड़ों फाउंडर्स के सपनों को दिशा दे रहे हैं। 23,000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स का नेटवर्क बनाने वाले हमारे अगले मेंटोर, उनका स्वागत कीजिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के को फाउंडर मिस्टर नितेश शाह। नितेश भाई, स्वागत है आपका।
6: थैंक यू सो मच।
4: थैंक यू फॉर कमिंग।
6: प्रिविलेज टू बी हियर।
4: प्लीज। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इन्होंने उस शॉपिंग को कमाई में बदल दिया। करोड़ों भारतीयों को स्मार्ट शॉपिंग का नया तरीका सिखाया, हजारों लोगों को अर्न करो के जरिए रोजगार का नया रास्ता दिखाने वाली कैश करो और अर्न करो की को फाउंडर, प्लीज वेलकम स्वाति भार्गवा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो।
2: थैंक यू,
4: प्लीज हैव अ सीट। आ रहे हैं हमारे स्पेशल मेंटोर। एक वक्त था जब लोग सिर्फ बड़े फॉरेन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खरीदते थे, फिर एक एंटरप्रेन्योर आया जिसने कहा हम भी बना देंगे, और आज 12,000 करोड़ से ज्यादा की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बना ली। प्लीज वेलकम इंडिया के नंबर वन ऑडियो ब्रांड और दुनिया के वन ऑफ द टॉप 5 वेयरेबल ब्रांड बोट के को फाउंडर मिस्टर अमन गुप्ता। Hi Aman, thank you so much for coming. Please have a seat. नाम विरासत दे सकता है, लेकिन नई सोच, नई एनर्जी और नए नजरिए के साथ उसे आसमान तक ले जाना ये इन्होंने कर दिखाया। एयरपोर्ट को सिर्फ लैंडिंग एरिया नहीं, प्रोग्रेस का रनवे माना। ये हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी में बदलने का जज्बा रखते हैं। गूगल के साथ $15 बिलियन की AI पार्टनरशिप क्रैक करने वाले, एयरपोर्ट्स और AI ड्रिवन भारत के विजन की कमान संभालने वाले, प्लीज वेलकम द यंगेस्ट सेकंड जनरेशन चेंज मेकर ऑफ अदानी फैमिली, मिस्टर जीत अदानी। हाय जीत, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड कमिंग हियर।
5: एब्सोल्युटली,
4: प्लीज हैव अ सीट। So good to have all 5 of you here. Thank you so much for coming. Jeet, आपके फादर जो हैं, उनका ये सपना था कि एक ऐसा मंच तैयार हो वंदे भारतम, जहाँ पर प्रोत्साहन मिले उन स्टार्टअप्स को जिन्हें मौका नहीं मिलता। ये मंच उनको यहाँ पर इनवाइट कर रहा है जो कि छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में जहाँ पर बसे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको ये देख कर कि आपके फादर का वो सपना और अब धीरे धीरे फाइनली रंग ला रहा है?
5: Right, it's definitely very heartening to see. वो always execution oriented रहे, तो उन्होंने जो सोचा है वो always हो गया है। तो first time I'm seeing that from a softer point of view, कि जो उनका एक सपना था कि पूरे देश के कोने कोने से startups और entrepreneurs को कैसे एक stage पे ला सके और उनको कैसे support कर सके, I'm seeing that live now and very excited for what's going to come today.
4: So one personal question hai ki itne busy honge Gautam sir, to kya unhe

0: स्टेज पर किया होगा, जब आप अपनी पहली पिच लेकर गए होंगे तो वो जो फीलिंग्स आप लोगों के उस समय दिल में होगी, आपके जहन में होगी, एग्जैक्टली वैसी फीलिंग्स ना हमारे इनोवेटर्स की बाहर है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली उनका हाल क्या है। तन्वी, ओवर टू यू।
1: एक सेकंड, मैं आ गई, आ गई। मैं सुंदर तो दिख रही हूँ ना? नहीं, मैं टीवी पे आने वाली हूँ, फाउंडर्स इनोवेटर्स अच्छी दिख रही हूँ ना? सबकी यहाँ पे आंखें मेडिटेशन में जा रही है, इतनी घबराहट हो रही है, मतलब अहमदाबाद के तापमान से बड़ा तापमान यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर है तन्वी आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके वॉर्म्थ के लिए, आपको बढ़ावा देने के लिए। सो हम रेडी है ऑन द काउंट ऑफ थ्री। वंदे वंदे वंदे, ऑल द बेस्ट इनोवेटर्स, rock the stage, the day is yours.
0: So mentors, अब जो हमारे innovators हमारे सामने आने वाले हैं, वो one of the youngest innovators हैं। वो इतने young हैं कि उनके जो दोस्त हैं, वो उन्हें कहते हैं कि chill bro, पर वो कहते हैं कि chill ho.
2: Wow.
0: Please welcome the founders of chill ho.

0: मैं ध्रुव प्रताप सिंह चौहान, जयपुर राजस्थान से, और मैं अभी थर्ड ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में।
1: और मैं अथर्व योगेश जामरे, धुए महाराष्ट्र से, और मैं भी इसके साथ सेम क्लास में पढ़ता हूँ।
2: सो बेसिकली हमेशा आप लोग चाहते थे कि हम लोग कुछ ऐसा सोचें जो बाकी लोगों ने नहीं किया, या ये जरूरत से पैदा हुआ?
1: हमारा एक कॉलेज का भी प्रोजेक्ट था जिसमें हमको एक परफ्यूम ब्रांड बेचना था एज अ मार्केटिंग प्रोजेक्ट। उसी से हमारी शुरुआत हुई एंटरप्रेन्योरशिप की। सो वी सोल्ड आउट विद इन 3 आवर्स। इसलिए हमको तो पता चला कि देयर इज समथिंग वी कैन डू इन दिस, एंड तब से हमारा चल रहा था कि कुछ ना कुछ इस सेक्टर में करना है।
2: आप लोगों को देख के लगता है एक्चुअली हमारे देश का जो भविष्य है वो वाकई बहुत उज्ज्वल है, बिकॉज यंगस्टर्स लाइक यू हैव द पोटेंशियल टू एक्चुअली चेंज द होल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। आप लोग अपनी पिच के साथ तैयार हैं?
0: या
1: करेक्ट।
2: 3 मिनट आपके पास में, और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
1: भाई बहुत गर्मी हो रही है यार।
0: हाँ यार, बहुत ज्यादा ही गर्मी है यार।
1: इस गर्मी का कोई सोल्यूशन है क्या?
0: यार क्या ही सोल्यूशन है यार, एसी में बैठ जाएंगे, ठंडा पानी पी लेंगे या कूलर चला लेंगे।
1: सही कहा। तो जजेस, ये है इंडिया के टॉप 3 मोस्ट यूज कूलिंग सोल्यूशन। लेकिन इनकी एक ही दिक्कत है कि ये कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इंडियंस की एक खास बात बताओ तो वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कोई भी जुगाड़ लगा लेते हैं, जैसे कि पानी की बॉटल से ड्रिप इरिगेशन बना लिया, या फिर कोई साड़ी से शॉल बना लिया। और इसी गर्मी को टैकल करने के लिए इंडियंस ने निकाला एक गीला गमछा, उसे वो अपने गले पे लगाते हैं और ठंडा हो जाता है। लेकिन जो डिलीवरी ड्राइवर्स, फार्मर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो इस सोल्यूशन को यूज करते हैं, उन्हें 2 मेन दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, जो कि ऐसे 20 से 30 मिनट की कूलिंग और उनकी पूरी शर्ट गीली हो जाती है।
0: लेकिन अथर्व, यही एक प्रॉब्लम नहीं है। जजेस, आपके और मेरे पास तो एसी का प्रिविलेज है, लेकिन आप उन 38 करोड़ भारतीयों के बारे में सोचिए जो हर रोज 8 से 12 घंटे इस कड़ी धूप में निकलते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पेट पाल सके और इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। और इसकी कीमत सिर्फ उनके पसीने में नहीं चुकती है, 12 से 4 के बीच में वो लोग काम ही नहीं करते। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते, ये उनकी मजबूरी है गर्मी की वजह से, और इसका सीधा असर उनकी जेब पे पड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, डेटा के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की 2030 तक 4.5% GDP, जो कि है 150 से 250 बिलियन डॉलर्स, विलुप्त हो जाएगी। ये इंडिया की प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा लीक है जो आज तक छुपा हुआ था। हमारे दिमाग में यही आइडिया आया कि हम इस गीले गमछे के जुगाड़ को रिप्लेस करने के बजाय क्या हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं।
1: और इसी आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए हमने की कई महीनों की रिसर्च। बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद हमें मिला एक वायबल सोल्यूशन, और उसी सोल्यूशन को बनाने के लिए हम पहुंचे इसकी हॉस्टल की बालकनी में। उस बालकनी को हमने एक लैब बना दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे फेल्ड प्रोटोटाइप्स भी बने, लेकिन फिर हमारा बना एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट। हमने बनाया चिल होम।
0: चिल होम एक कूलिंग टॉवल है, ये पोजीशन है एज अ हीट प्रोटेक्टिव गियर और एन एडवांस गमछा। बस आपको इसको इस बॉटल से निकालना है, इसको ये पानी में डुबोना है, और इसको 1 मिनट तक डूबे रहने देना है आपको, थोड़ा सा और ऐसे करते रहना है। बस आपको इसको ऐसे निकालना है, कोई सा भी पानी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ गर्म पानी यूज़ कर रहा हूँ। आपको इसको एकदम निचोड़ लेना है अच्छे से, बस आपको इसको थोड़ी देर ऐसे झटकना है 2-3 बारी, और इसको अपनी गर्दन पे लगाना है। आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा?
3: मॉडल।

0: I can feel the cooling.
1: Cooling, yeah.
0: और गीला भी नहीं हो रहा, it's not
2: gila नहीं है, क्योंकि I have squeezed it.
3: Jit bhai, it's not wet.
0: It's not wet.
4: ये भाई.
3: पर टेक्नोलॉजी क्या है?
5: अब देखिए,
2: ये बेसिकली एक पेटेंट फाइल हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी है. इसकी वजह से इसमें पानी बहुत देर तक होल्ड रहता है, और जैसे ही हवा इंटरैक्ट करती है ये धीरे धीरे पानी छोड़ता है और आपको वो कूलिंग सेंसेशन देता है.
3: टॉवल का मटेरियल क्या है?
2: टॉवल इज माइक्रोफाइबर.
0: माइक्रोफाइबर
2: बेसिकली ये टेक्नोलॉजी और थोड़े बहुत हाइड्रेशन की वजह से किसी भी क्लॉथ पे इम्प्लीमेंट की जा सकती है.
0: You guys are still in college?
2: Yeah, third year. So, हम लोग अभी एक हफ्ते की छुट्टी लेके आए. Attendance का थोड़ा सा scene हो रखा है.
0: But it's great to see two young guys having innovated something that is a grassroots level problem.
5: Yeah.
0: It's not a fancy problem.
2: Thank you. Thank you so much.
3: Yeah. I think at 20, what you guys are doing is now.
0: How long will it take you guys to scale up production?
2: We are planning to reach a 2 crore revenue by the next year, 27-28.
0: Yeah.
2: So 2 crore revenue unse aayega, it is equal to 30,000 workers. Agar hum sirf delivery partners ki baat kare, so they are around 50 lakh delivery riders across all platforms in India. Aur sirf hum unme 30,000 bhi target kare, we will easily achieve the 2 crore revenue.
6: And this is just delivery drivers, so there's other markets like construction workers.
0: I was going to ask for construction
2: workers. Construction workers,
6: it's a bigger market than delivery drivers because it's way more, the numbers are way more. Yeah. And we can also target them.
0: And what do you need to do to increase your production in terms of capital, resources, as well as what milestones do you guys have to hit?
2: That's why we have come here. We need funds, that is 1 crore. Because आधे से ज़्यादा फंड्स हमारे उसमें जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, और हमें थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी है सो वी कैन आइट्रेट एंड मेक इट वेरी गुड और अच्छा बना सके इसको.
6: एंड IPN सर्टिफिकेशंस के लिए थोड़ा फंड लगेगा.
0: सो राइट नाउ इज योर इज इट पेटेंट प्रोटेक्टेड?
6: प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड इज पेटेंट.
0: ओके,
4: एक चीज बताता हूँ कि आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है जितना आप सोच रहे हो उससे.
2: हाँ सर.
4: यू नीड एनी मेंटरशिप, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी अ ब्रेक थ्रू इनोवेशन. एंड 2 crore आपको लग रहा है, ये 20 करोड़ भी बन सकता है अगला साल. सो यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल.
0: वी हैव अ कपल ऑफ लैक वर्कमैन वर्किंग एट डिफरेंट साइट्स इन वेरी हार्श कंडीशंस.
2: या
0: एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू गेट योर प्रोडक्ट टू ऑल ऑफ देम. थैंक यू.
7: ये जो वंदे भारतम का जो मंच है ना, इसका जो दिल है वो ग्रास रूट में धड़कता है. एंड यू हैव एक्चुअली कम अप विद समथिंग विच इज सो ग्रास रूट रिलेटेड. थैंक यू सो मच हमारे इस प्लेटफॉर्म को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, एंड टू गिव इट एक्चुअल द मीनिंग जो जिसके साथ में हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू की. बट एक चीज और भी है जो मुझे मालूम है इनके बारे में, बता दो.
1: मैं ही बता देता हूँ.
7: आप ही बता दो.
2: बेसिकली मेरे डैड को नहीं पता है ये, तो थोड़े से वो स्ट्रिक्ट है. उनका ये है कि जॉब करो, थोड़ा स्टेबल हो जाओ और ये सब. मेरे में था कि नहीं यार, ऐसे कुछ रिस्क लेना है और कुछ तो करना है. सो डैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस. और फिर कॉलेज में मैंने पूछा, क्योंकि वही सबसे ईजी सोर्स है को फाउंडर्स और इनके लिए जिनसे आइडियोलॉजी मैच होती है, तो 40-50 लोगों को पूछा. उसमें से ये भी था, उनका सबका ये था यार हमें तो या तो जॉब करनी है या हम कॉलेज के फेस्ट में बिजी है, हमें वो करना है ये करना है. इसने मुझे बोला, भाई तू क्या बना रहा है? मैंने बोला ये. बोले यार ये तो बहुत लोगों की हेल्प करेगा. बोले हाँ. बोले चल ठीक है, मैं आ जाता हूँ तेरे साथ में, अपन ट्राई करते हैं बस.
7: पापा का सपोर्ट मिला कि नहीं मिला ये तो बता दो. पापा
2: बस उनको इसी चैनल के थ्रू पता चलेगा जब वो देखें.
0: व्हाट वाज योर आस्क?
2: 1 crore.
7: जी देख सेकंड, दिस इज सच अ मोमेंट फॉर हिम, फॉर द प्लेटफॉर्म एंड फॉर हिज फादर, बिकॉज इनके फादर को हमने वीडियो कॉल पे लिया है. Let him witness. सर ये आपके बेटे हैं और ये जीत अदानी है, और आपके बेटे का इन्होंने अभी आइडिया सुना और उन्होंने कहा कि इनकी अब पूरा सपोर्ट है इन दोनों को और इनके आइडिया को, इनके इनोवेशन को. Not just mentorship, but financial support भी करने की ऐसी इच्छा रखते हैं जीत.
8: Thank you so much.
0: Wow. Keep believing in your son, sir.
8: I am so grateful for God. कि इतना अच्छा मौका मिला है. It could be. Every father wants इसका बेटा success. I am proud of you, बेटा. So well done.
7: और

0: ये सब मैं अपनी मॉम को डेडिकेट करना चाहूँगा। उनको मैंने ये आइडिया बताया था और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस पर। उन्होंने बोला बस बेटा तू कर और आगे चालू हो जा, बस और कुछ नहीं। बस
1: ये
2: अभी वंदे भारतम के मंच पर अभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी हो सकता है कि आप टॉप 5 फाइनलिस्ट में पहुंचे, जहां आपको जीत के फादर जिस छोके हो, जिसने कॉन्सेप्चुलाइज किया था, जिसने विजुलाइज किया था, श्री गौतम अदानी जी, उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप फाइनलिस्ट बने तो अपने पापा को जरूर साथ में लेके आइए।
0: मैं मॉम और डैड दोनों को साथ में लेके आऊंगा।
2: सुपर, ऑल द बेस्ट, डू वेरी वेल इन योर लाइफ, कीप शाइनिंग। I just wanted to ask you, Jeet, ki kya aapne relate kiya? You know, when you started, because you started very young, and you suddenly see two young boys who just need support. Kya kahin wo ek emotional feeling bhi aap?
3: No, 100%. I saw a little bit of myself in them. I remember my college days also when I was trying to figure out what project to do and blowing up a couple of projects also. So it's, you know, it's heartening to see two young guys who are, you know, so passionate about it and against all odds.
2: Yeah. I'm saying, I'm nobody to say this, but I can see a very, very good, very, very fine leader in you. That was so nice of you to actually extend your support to them. That's fantastic. So scores, aapke ready hai?
4: Yeah.
5: Yes, sir.
2: Vande Bharatam jari rahega. Lautte hain ek chote se break ke baad. तब तक आप भी इनोवेटिव आइडिया सोच सकते हैं।
6: फर्स्ट एवर फ्लशेबल एंड 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। तो ऐसा सैनिटरी पैड जो आप कहीं पे भी फ्लश कर दो।
7: यू वांट टू डू अ डेमो?
6: दिस इज अ रेगुलर पैड। रेगुलर पैड टेक्स अबाउट 800 प्लस इयर्स टू डिकंपोज।
8: हमने ये बनाया एडप्टिव, व्हीलचेयर बाउंड पीपल के लिए एक इंडिपेंडेंट मोबिलिटी है।
3: Don't look at the disability, look at the magic of the ability that they have. I can go out of the way of them help करी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
3: Welcome back to Vande Bharatam, an initiative by Gautam Adani. All right, Swati, ये जो हमारी अगली इनोवेटर आ रही है यहाँ पर, उन्हें देखकर आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है.
4: Amazing.
3: दूसरी बात, जिस आइडिया के साथ में वो आ रही है, that might make you smile even broader because you may just connect with that one.
4: Okay.
3: Please welcome the founders of Flossom. Hi. Welcome, welcome.
5: Thank Hi. You. So nice to meet you.
3: Yeah, pleasure.
5: My name is Ranu. I'm a founder of Flossom. I basically chote se gaon se aati hu, which is called as Sangli. And Flossom ki story starts with me. First period cycle, did not have any access to menstrual hygiene. So, maine soch liya 8th standard mein ki mujhe yahi karna hai. And planned my corporate life, startup life, education, post-graduation only around this. 15 years of corporate experience with P&G, Whisper mein kaam kiya, Snapdeal mein kaam kiya, Max Group mein kaam kiya, healthcare bana diya, Ship Rocket mein kaam kiya. Ye sab main isliye bol rahi hu because these all industry taught me how to scale, how to innovate and be bold relentlessly.
6: Hello everyone, my name is Atesh. I am CBO, CEO at Flossom. Been part of this journey since very inception and really excited to be here.
3: Ranu and Hitesh, right?
5: Yes.
3: Ranu, आपने कहा आप एक बहुत छोटे से शहर से हैं, सांगली, महाराष्ट्र में पड़ता है.
5: हाँ जी.
3: कमाल है, बताइए, मैं ये हमारे शो की खूबसूरती ये है कि हमारे शो के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं और इतने सॉलिड आइडियाज लेकर आ रहे हैं विच कैन एक्चुअली चेंज द होल लैंडस्केप ऑफ आर कंट्री.
5: टोटली सर.
3: आप दोनों फ्रेंड्स हैं?
5: Yes.
3: डिफरेंस.
5: सो वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इन स्नैपडील और 4 साल इतनी लड़ाई करी कि पता चला कि सारे ऑपोजिट स्किल सेट से. तो जब आइडिया पिच करी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो टिश्यू पेपर पे सेल हो गया था. एंड एक आई वांटेड अ मैन इन द मेंस्ट्रुएशन जो ऑपोजिट व्यू पॉइंट लेके आए, बिकॉज अगर मैं इसको कन्विंस कर सकती हूँ ना, तो आई एम श्योर बाकी लोगों को कन्विंस कर लूंगी.
3: रेडी हैं आप लोग?
5: डेफिनेटली.
3: आपके पास में 3 मिनट हैं और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब.
5: डेफिनेटली. थैंक यू.
6: रानो, ये क्या छुपा रखा है?
5: कुछ भी नहीं.
6: अरे बताओ बताओ.
5: कुछ भी नहीं, बट आई एम श्योर यहाँ पे जो बैठा है ना, सबको पता चल चुका है कि मेरे हाथ में है क्या.
6: एग्जैक्टली. अ वुमन्स जर्नी टू डिस्पोज ऑफ अ पैड, एक्चुअली डिस्पोज ऑफ अ यूज्ड पैड इज लॉन्गर देन व्हाट यू थिंक.
5: पहले पैड यूज करो, फिर उसको रिलीज पेपर लगाओ, न्यूज पेपर लगाओ, देन द नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट. डस्टबिन ढूंढो, डस्टबिन हो सकता है बालकनी में, टेरेस में, किचन में, जाके डिस्पोज करो. Just imagine how longer the process is. So what we decided is that to solve this problem totally, we did 17,000 consumer research. ठीक है? फिर पता चला कि 3 buckets में problem divide हो रही है. First, India में only 40% of people are using sanitary pads. Just imagine after so many evolvement of the cultures. Second, one pad takes about 800 plus years to decompose. And third, 1 out of 3 menstruators जिससे हमने बात करी ना, वो अपना पैड यूज पैड मोस्टली घर आके फेंक रहा है. बिकॉज वी ऑल नो पीरियड ब्लड इज इम्प्योर, लॉट्स ऑफ मिथ्स एंड टैबूज अराउंड पीरियड ब्लड. सो ये सब चीजें बकेट हो रही है. सो व्हाट वी थॉट, लेट्स क्रिएट फर्स्ट एवर फ्लशेबल एंड 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड. सो ऐसा सैनिटरी पैड जो आप कहीं पे भी फ्लश कर दो. एंड द ब्यूटी इज दैट बायोडिग्रेडेबिलिटी जो ग्लोबल बेंचमार्क है 180 days का, वी हैव गॉट इट डाउन टू 28 days. So as a consumer, if you're not comfortable flushing it off, आप discard कर दो, वो auto disintegrate होएगा in 28 days.
6: तो मतलब use करो और flush करो.
5: Flush करो, flush करो, flush करो. ये पूरी journey में ना 28 साल, we got validated by Ministry of Textiles. तो पहली great grant आ गई, जिससे थोड़ा push आ गया.
6: We are Flossom, we are smarter, sustainable, awesome Flossom.
5: Awesome Flossom. Amazing.
3: Very impressive.
4: So Ranu, firstly, I love the name. I think Flossom is such a nice name actually. एंड मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि एक सांगली की लड़की IIT IIM में पढ़ने के बाद विद सपोर्ट एज वेल बट शी इज एक्चुअली लुकिंग एट अ प्रॉब्लम दैट रियली नीड्स लुकिंग इनटू. दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड जो ये पैड्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते ना दैट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्लास्टिक वेस्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड इज डूइंग सो मच डैमेज. सो आई एम ग्लैड दैट एटलीस्ट आई डिस्कवर्ड यू टुडे. सो आई वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड द फ्लशेबिलिटी एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोडक्ट. यू वांट टू डू अ डेमो?
6: So I'm just cutting half of a regular pad and a flushable pad. I'll dip both of it.
5: This is a regular pad.
4: Oh, it's like tissue only, then the way the tissue goes
5: it's
4: in
5: breaking
4: it.
5: Down.
4: Yeah.
6: So this is 1/10 of the actual pressure of a toilet, to be very precise. The normal pad won't disintegrate anyhow, no matter how much the pressure is. Even if it passes through somehow, it will eventually clog the whole pipeline.
5: We created tissue papers, yes. Toilet seat covers, wet wipes, dry wipes, so we can everything flushable.
6: Yeah.
5: Ye ek wet wipe hai.
6: Same material, say.
5: You want to do this?
6: Actually, we did the harder part first. Pad ban gaya toh ek layer se tissue paper banana zyada aasan tha.
7: So while you're doing this, amongst the competitors, nobody is actually focusing on the sustainability aspect?
5: Sir, we've got approached by competition actually.
7: Okay.
5: So, this is like broken now, like totally. Ye khatam hoya.
3: Wow. Patent hai aapke paas?
5: Haan ji, haan ji, haan ji. So, we've got Indian patent. We also applied for PCT.
7: Nice.
5: Because Noon.com, Noon Minute se hume PO aa rahe.
3: Sahi hai. बहुत सही है.
8: Tell me one thing. One of the concerns people normally have with full textile pads is leakage.
5: हाँ हाँ.
8: So how do you address that with your product?
5: Sir, so BIS 5405 के certain guidelines होते हैं कि pad ने इतना तो tick off करना चाहिए. तो Flossom exceeds all the parameters. So what are we trying to sell is that rash free होएगा, leakage नहीं होएगा, absorption amazing होगा. The byproduct is flushable. I'm not trying to sell sustainability. It should be a convenience feature. Yeah. तो है ही.
7: इसका price as compared to normal pad?
5: So Flossom regular is benchmark with our newest brands totally. Flossom flushable 17 to 18 rupees पे starting range start हो रहा है.
3: Very good. अच्छा है.
7: What is the current traction, if I may know? Or what's your current?
5: So last year we did about 75 lakhs gross. Our hero product will be launching in like funding plus 2 months. That's the timeline of launch. Like Flossom flushable launch होएगा wiring plus 2 months पे. तो उसके ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं. दिस AMJ में हमने क्रैक किया अराउंड 21 लाख्स.
7: अराउंड 21 लाख्स. व्हाट्स द आस्क, फंडिंग आस्क?
5: सो वी आर रेजिंग 12 करोड़ एंड 9 करोड़ कमिटेड. ड्यू डिलिजेंस हो चुका है. SHA SSA इन प्रोसेस चल रहा है. सो रिमेनिंग
7: 3 करोड़. एंड व्हाट वैल्यूएशन?
5: 45 प्री मनी.
9: एस्ट्रो टॉक पे हमारे 8 से 10 करोड़ कस्टमर्स हैं, उसमें से 60% फीमेल्स हैं. तो मैं वहाँ पे भी आपको फ्री एक प्रमोशन दे सकता हूँ ऐप के अंदर, जहाँ पे सब फीमेल्स देख सकती हैं कि ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और यूज करके देखेंगे. सारी पेइंग कस्टमर्स हैं तो आई एम श्योर उनको अच्छा लगेगा.
5: थैंक यू सो मच.
9: एंड आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट ऑल्सो. आई वुड लाइक टू पुट 3 crore.
5: ओह वाओ,
10: देयर यू गो. गुड राउंड ऑफ अप्लॉज.
9: फाउंडर देख के सब कुछ होता है, बाकी सब तो.
5: थैंक यू सो मच.
9: थैंक यू सो मच.
10: रियली कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू. आपको आपकी पार्टनरशिप का शुभारंभ पुनीत के हाथों हो चुका है एंड आई होप दैट दिस पार्टनरशिप एक्चुअली जस्ट ग्रोज मेनी फोल्ड्स इन द कमिंग टाइम.
5: थैंक यू सो मच.
6: थैंक यू.

0: जीत, आपकी आपके फादर के साथ में रिलेशनशिप कैसी है? यू नो, वो गौतम अदानी जी हैं, तो वी आर ऑल वेरी क्यूरियस टू नो, आप सबसे छोटे बेटे हैं, आपके बॉस भी हैं और आपके फादर भी हैं, किस तरह की रिलेशनशिप है?
1: मोस्ट पीपल हु आर वर्किंग, वो घर जाते हैं तो यू नो दे आर रिलैक्सिंग. आई डोंट एवर गेट टाइम ऑफ.
0: बट कभी डर तो लगता होगा, लाइक जनरली
1: ऑलवेज डर लगता है इसलिए.
0: तो लाइक सपोज करो आपको कोई दिमाग में आइडिया आया, यू वांट स्टार्ट समथिंग न्यू, आप कैसे पिच करते हो उनको?
1: तो अगर इफ देयर इज एनीथिंग न्यू दैट आई एम थिंकिंग ऑफ, इट्स नॉट दैट मैं पूरा सोच के आई एम फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ. आई एक्चुअली बाउंस आइडियाज ऑफ हिम, ही गिव्स मी फीडबैक इन हिज ओन वे, एंड देन यू नो वी वर्क ऑन इट एंड इटरेट.
0: आई थिंक दैट इज हाउ इट वर्क्स. और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था बिकॉज जो अगली जो इनोवेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो भी एक पिता और बेटे की जोड़ी है. वाओ.

0: Well, painters, मेरा नाम जिग्नेश शाह है, मैं फ्रीडम बीज का फाउंडर हूँ।
1: नमस्ते, मेरा नाम ध्वनित शाह है, मैं फ्रीडम बीज का को-फाउंडर हूँ।
0: सर, आज मैं मेरे एक दोस्त की बात करने आया हूँ जो बचपन से दिव्यांग था और व्हीलचेयर बाउंड था। उसकी प्रॉब्लम डिसेबिलिटी नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी डिपेंडेंसी। जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो उसको चार बार शिफ्ट होना है। उसके लिए उसको पेरेंट्स हो या फैमिली मेंबर्स को उसको उठा के बिठाना, व्हीलचेयर डिक्की में रखना, वो सभी प्रॉब्लम्स से वो इरिटेट होता था। मतलब कि किसी को तकलीफ देने का फील करता था, वो अवॉइड करता था। मुझे मिलता, मुझे बताता कि यार कुछ ऐसा जुगाड़ करो ताकि हमारी डिपेंडेंसी ना हो। तो हमने ये बनाया एडप्टिव। ये टोटल इलेक्ट्रिक है और ये व्हीलचेयर बाउंड पीपल के लिए एक इंडिपेंडेंट मोबिलिटी है।

0: Wow. That's incredible.
1: तो जो दोस्त के बारे में बात करता था वो आज आपके सामने है। ये एडप्टिव व्हीकल जो हमारा इन्वेंशन है।
2: अमेजिंग
3: भाई,
1: थैंक यू वेरी मच।
3: वेलकम वंदे भारतम के मंच पर एंड ऑफ कोर्स ध्वनित वेलकम। जनरली जो हमारे जितने अवार्ड फंक्शंस होते हैं, ग्लैमरस शो होते हैं, वहाँ पर हमारा हीरो एक मोटरसाइकिल के ऊपर आता है। यहाँ पर आपकी एंट्री बिल्कुल किसी हीरो से कम नहीं थी और आपकी जिंदगी में जो आप कर रहे हैं वो भी किसी हीरो से कम नहीं है।
1: जी सर, थैंक।
3: आप उम्मीद क्या करते हैं आपके सामने?
1: उम्मीद तो ये है सर कि हमारा जो व्हीलचेयर बाउंड कम्युनिटी है ना, उसके लिए जो बाजार में उपलब्ध साधन दो पहिए का स्कूटर होता है और एक ट्राइसाइकिल होती है। मेरा व्हीलचेयर लेके मुझे ट्राइसाइकिल में नहीं जा सकता, ना ही दो पहिए के स्कूटर पे जा, मुझे उठा के शिफ्ट करने के लिए भी दो बंदे चाहिए। तो ये पर्पस मेरा ये है कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो मैं डिग्निटी के साथ, आज आप नहीं मानोगे मैं रहता हूँ 15 किलोमीटर दूर यहाँ से, मैं ये लेके ही आया और एक आत्मविश्वास के साथ आया और आत्मनिर्भर बन के आया हूँ कि आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, मेरी 10 साल की जो मेहनत है उसको एक एक मुकाम पे ले जाने के लिए आया हूँ।
3: ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप ही की है?
4: सभी चीज हमारी है, सभी
1: जीरो से बनाया
4: है, सब जीरो से
1: फैब्रिकेट,
4: बिल्कुल स्क्रैच है। और इसका ना ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, खुद ही से ये सब हमने धीमे धीमे करके असेंबल मैन्युफैक्चरिंग, और जिसको आप ये जुगाड़ जैसा दिख रहा है कुछ, इसको जुगाड़ को अच्छे से शेप में लाने का हमने प्रयास किया।
3: ये जुगाड़ नहीं है, ये प्रोटोटाइप है बॉस।
4: यस, प्रोटोटाइप।
3: ये जुगाड़ नहीं है।
4: हम लोग सालों से
1: तो उसको जुगाड़ी।
0: यू नो लास्ट ईयर एक बार मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो एक महीने तक आई वॉज ऑन द व्हीलचेयर। तो जिस तरीके का आपको चैलेंजेस आते हैं वो आप तभी रियलाइज कर सकते हैं जब आप, और आपने जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि यू फील वेरी कंस्ट्रिक्टेड कि आपको हमेशा लोगों की जरूरत है, और इंडिया जो है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है। हमारी रोड्स में खड़े हैं, हमारे रैंप ऐसे हैं, तो हमें लोगों को साथ में लेके साथ में जाना पड़ता है। तो इसलिए इस स्पेस में हमें इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, एंड आपने जिस करेज से अपने प्रॉब्लम को अप्रोच किया इन अ वे दैट यू कैन हेल्प अदर्स आल्सो, दिस इज अमेजिंग अमेजिंग।
4: थैंक्स भाई। जय जिनेंद्र
1: भाई। जय जिनेंद्र,
4: कैन आई कम देयर एंड जस्ट ग्रीट यू?
1: या
4: आई थिंक फैंटास्टिक, आई एम रियली मूड। आई थिंक गुजराती होवानो मने आजे गर्व छे। आई थिंक वी आर ऑल डिसेबल्ड बाय आवर थिंकिंग and not by, I think, physical, but your studio created is commendable. Thank you so much.
1: Thank you very much.
4: Right.
0: Rajiv, जैसे आपने बोला कि उन्होंने हीरो के जैसे एंट्री की है, उसी तरीके से he is going to be the hero for many people.
4: Exactly.
0: And that is inspirational कि we get to witness this today.
5: एक चीज जो आपने बताई, which you know always connects with me, is के कोई भी दिव्यांग जन होता है तो उनको सिंपति की जरूरत नहीं है।
1: 100%
5: वो कभी किसी की सिंपति, उनको क्या चाहिए कि एम्पैथी चाहिए। डोंट लुक एट द डिसेबिलिटी, लुक एट द मैजिक ऑफ द एबिलिटी दैट दे हैव। और यू नो आपने जो बनाया है ये, इट्स रियली यू नो सीइंग यू, आपको जो फ्रीडम मिला है, आई होप के आप सैकड़ों सैकड़ों और लोगों को भी दे सको।
1: जी जी, थैंक यू। आज जो हम आने का मेरा मकसद मेन ये है कि इसको वैलिडेशन करवाना है। ये मुझे कल से बेचना या मार्केटिंग के लिए, उसके लिए नहीं आया हूँ सर। इसको वैलिडेट करवाना है, उसका एक पूरा एक रोड मैप है। आप जानते हो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, राइट? भले सोशल इम्पैक्ट का काम है, भले हमें एक आत्मनिर्भर बना रहे, पर ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो हमें ये पूरा एक रोड मैप के लिए हमें एक्सपर्ट्स की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जितना स्केल है, इसका जितना स्केल है, ये यहाँ तक पहुँचा है। पर अभी हमें एक्सपर्ट्स का इनपुट चाहिए, हमें मेंटरशिप ऐसी चाहिए कि हमें ये पूरा रोड मैप क्लियर करके, सभी माइलस्टोन क्लियर करके लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, तब जाके मेरे जैसे वो लोग भी आत्मनिर्भर होंगे और मेन स्ट्रीम में आएंगे।
5: आई कैन गो आउट ऑफ द वे, मैंने कहूँ चुकी हूँ, तुमने हेल्प करी, मेंटर करी, यू नो आई विल हेल्प।

0: you from our side. I think we should.
1: Yeah, we should give our Vande Wings for sure.
2: Vande Wings to banta hai.
3: Congratulations. Excellent.
0: Excellent. मैं काम करता रहो तुम बहुत अच्छा
2: हमारे हमारे तुमने पगे लगवाने हैं फैंटास्टिक इंस्पायरिंग वेरी वेरी इंस्पायरिंग
4: जानते बंद कर रहे
2: हैं I think मैं actually startup founder तुम्हारा जवान नहीं जवान mentor तुम्हारा जवान नहीं I think it's a big thing what you have also done to give up your career for something that your dad believed
1: अगर हमारे पास best son award होता तो वो definitely आपके पास ही जाता
2: fantastic really good
1: it's a tough journey but you both have really done very well
0: फटाफट लाइसेंस कराई गई
2: कांग्रेचुलेशन
4: थैंक यू
3: सर

0: I'm just wondering actually, क्या स्कोर देंगे आप? 10 में से 11?
1: I think it's beyond scores.
0: It's beyond.
2: Yeah, yeah. This is going for sure.
0: आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये सफर थमेगा नहीं। आज वंदे भारतम के इस कारवां में आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट एट vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। फिर मिलेंगे भारत के नए कल में। आपको क्या क्या दिख रहा है?
3: ज्योति मुझे सब कुछ डिस्क्राइब कर रही है। तो मेरे सामने जीत अडानी सर हैं और इधर उनके लेफ्ट में है पुनीत गुप्ता सर और अमन गुप्ता सर।
4: ये तो बहुत अलग है, ये तो मतलब इट कैन बी अ रेवोल्यूशन।
5: यू आर लिटरली चेंजिंग लाइफ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा प्योर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
10: Bade bade imtihano se guzarta hai, waqt tarashta hai jise, jo jaane kya kya na karta hai. जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
11: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
2: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद, सिर्फ एक एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
5: देश का टायर जेके टायर।
0: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
4: बड़े-बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या-क्या ना करता है. जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है. जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है. तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है.
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change.

0: मुकेश कुमार, मुकेश जी कहाँ से आए हैं आप?
1: मैं डैलस टेक्सास से।
0: ओह वाओ, सो एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू थ्रू दिस इवेंट टुडे? Yeah.

0: सदियों से जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में रह रहा और इस तरह से पाकिस्तान की साजिश का शिकार हुआ, जानबूझकर उनको निकाला गया और एक खास सिस्टम यहाँ अडाप्ट कराने की कोशिश की गई, उसका जो मारा कश्मीरी पंडित है, वो कश्मीरी पंडित आज भी बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। और उसकी उस बेबसी और उसका जो पलायन हुआ, उस पलायन को फिर मजाक कहना या उस पर तनज करना, मैं नहीं समझता हूँ भारत में ऐसे लोगों के लिए कोई एहतराम या रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। जिसने भी ये बॉर्ड कहे, शरून ने जो बॉर्ड कहे, उनको ये अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए।
1: अपने देश के किसी भी नागरिक पर कोई भी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर है, और जो लोग भी ये टिप्पणी करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं और हमारे लिए राजा और रंक दोनों बराबर है, और जाति और पंथ के आधार पे देश में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है।
2: ये इस तरीके से किसी कौम, किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों की को उपहास के तौर पर दर्शाना, ये निंदनीय है। आप अपने कॉमेडी के गुण का दुरुपयोग कर रहे हैं। कॉमेडी की भी एक सीमा होनी चाहिए। कश्मीर के लोग हमारे सिरमौर हैं, हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति है, और तो आप उनका मजाक उड़ाएं तो ये उचित नहीं है।
3: देखिए, कुछ समाज में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझकर के इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स करते हैं। उसके पीछे उनका मकसद केवल और केवल प्रसिद्धि पाना है। और अब हमें तय करना होगा कि सनातन हिंदू धर्म के देवी देवता या कश्मीरी पंडित, ये सारे मजाक का विषय नहीं बन सकते। तुम पहले कुछ भी करोगे, बाद में कहोगे मैं माफ़ी मांग रहे, उसके बीच में जो भी इन्हें पब्लिसिटी चाहिए फ्री में पूरे देश भर में मिल जाती है। तो ऐसे लोगों को सामाजिक मंच से एक कड़ा से कड़ा शासन हो।
4: इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट अ मैन हु हिमसेल्फ इज़ अ विक्टिम ऑफ एथनिक क्लींजिंग एंड जेनोसाइड trivializes the ethnic cleansing of his community. It is very unfortunate that he makes mockery of the hardworking people of this country, all for few eyeballs, few moments of fame, few likes. He has no business, Samay has no business to make mockery or the pain for the people who have been living in exile for the last 36 years, who are still awaiting justice, who have been victim of genocide and ethnic cleansing.
5: Meanwhile, leader of opposition Rahul Gandhi has hit out at the BJP and the RSS over purification ritual conducted at a venue after Congress President Mallikarjun Kharge delivered his speech in Uttarakhand. Rahul Gandhi has demanded FIR to be registered under the SCST Act. He also targeted Prime Minister Modi over the issue, questioning the BJP's leadership response to the alleged ritual. He added, "It is the duty of both the state and the central government to ensure that Kargeji receives justice in Uttarakhand."
6: जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SCST एक्ट में FIR दर्ज किया जाए।
7: उत्तराखंड की पुलिस उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार के दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी, उसका उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है संविधान का। और जो SCST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसमें भी छुआछूत को बैन किया गया, उसका भी उल्लंघन हुआ है। और कानून कहता है कि अगर कहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और उसकी सूचना पुलिस को अगर फ़ोन से भी मिल जाती है तो भी उसको मुकदमा तुरंत दर्ज कर देना चाहिए। तो अभी तक गूंगी बहरी बन के बैठी थी सरकार, और फिर उस शुद्धिकरण को जिस तरीके से

0: बीजेपी के उत्तराखंड के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समर्थन दिया है, जायज ठहराया है, उसी हिसाब से उनके खिलाफ भी मुकदमा बनना चाहिए।
1: खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहां पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहां पर गंदगी फैलाई जाती है, उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को कि खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड में बना दिया है, ये खड़गे जी इस आपको समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ वो होना नहीं चाहिए।
2: जनता कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जाहिर की कि किस तरीके से आज भी दलितों के साथ भेदभाव किए जाते हैं, उन्होंने कई उदाहरण भी देने का काम किया। आज भी अगर सामाजिक परिस्थिति बदली नहीं है, यकीनन ये चिंता तो हमारी सरकार के लिए है ही, और इसीलिए हम लोग अलग अलग विषयों पर मजबूती से अपने पक्ष को रखने की बात करते हैं।
3: मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है कि वहां पर हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में शुद्धिकरण किया गया है और जब खड़गे जी दलित समाज से आते हैं उनका अपमान हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी मनसा नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको अपने आप से अलग करती है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
4: उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है। वो तो वहां पर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और वहां पर गंदगी की गई, वो एक शुद्ध स्थान था, धार्मिक स्थान था, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। इसलिए बेवजह के मुद्दों को जो है वो आगे करके, आप लोग स्वयं हल्द्वानी के लोग हैं, आप लोग यहाँ के साक्षी हैं, उत्तराखंड में कौन इस बात को आज स्वीकार करेगा कि यहाँ पर जाति पाति का भेदभाव होता है।
5: Sonia Gandhi's memoir Belonging has hit a major publishing hurdle, with Penguin India saying it will not publish the book. According to Congress sources, the objections centers on three sensitive themes: China's border incursions, Prime Minister Modi's policy, largely of how Sonia Gandhi viewed Modi coming to power since 2014 and onwards, and RSS political influence. Congress leader Ashok Gehlot has called the episode Murder of Democracy and questioned why the truth should be hidden from Indians. Official Kerala Congress and NSUI handles posted posters taking a dig at Penguin India, alleging that publisher caved under pressure. But Penguin has a different version, saying fact-checking is normal part of the publishing process and it remained willing and keen to publish the book. Meanwhile, the BJP has slammed the Congress party and has said that they are spreading false narrative.
6: Penguin India ने जिस प्रकार से अचानक ही एक ऑथर सोनिया जी, जिसका जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ 10 नवंबर को वो प्रकाशित होगी पुस्तक, पूरे देश के अंदर एक इंतज़ार होने लग गया कब पुस्तक आएगी। अचानक ये खबर आई, इससे बहुत सबको धक्का लगा कि पेंजिन इंडिया का जो पेरेंट कंपनी है वर्ल्ड वाइड, वो तैयार छापने के लिए पुस्तक को, तो क्या कारण है कि इंडिया का जो उनका ऑफिस है वो इंडिया में छापने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनको दबाव है
7: के बीच में कहीं किसी तरह का अंतर विरोध हो? प्रकाशक का अपना प्रेरोगेटिव है, लेखक का अपना व्यू पॉइंट है, मुझे लगता है उसको राजनीति में लाने के बजाय प्रकाशक ही वही प्रकाशक किसी और को ढूंढ लेते, इसको राजनीति भारत सरकार को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है?
8: देखिए, सोनिया जी द्वारा जो लिखा गया मेमोर है वो मेमोर है या फिक्शन है ये तो लेखक और प्रकाशक के बीच में जो है वो तय होगा, जो प्रिंटर है वो तय करेगा या जो राइटर है वो तय करेगा। अगर हम मेमोर के नाम पर फिक्शन है तो निश्चित तौर से जो है वो उस पर जो है वो उसको जो है

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आकर मसाला।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose.

0: देखिए ना लेवल, वो डार्क लेवल देखिए ना, आप एक ढलान दो शायद तीसरी ढलान है वो,
1: तीसरी मंजिल है,
0: तीसरी मंजिल आपको खिड़की के नीचे वहाँ तक
2: मानसी पहले ऊपर
1: था। आप कहाँ थे जब मदद
2: करने के लिए? मैं इधर इधर ऊपर था। मैंने ऐसे बोला था उस जनता वो बिठा दिया ना, बिठा दी लोग को बोला था मोबाइल मत देखो, वो टिक टाक बनाता था, टिक टाक मतलब इधर इधर इधर आपने नहीं माना था। अरे मेरा पाला खोला आ गया, खोला आ गया, इधर इधर इधर बेच गया, इधर भाग गया, तो के नहीं बेचे, दो से जाना है, दो से जाना विद्यार्थी बच्चा है, दो से जाना है, इधर किसी भी नहीं बचा। अरे इधर से देखा वो पांच छह जाना है ना,
1: अंदर फंसे हुए थे,
2: अंदर फंस गया, और
1: पाइप आपने लगाया,
2: ये पाइप हमें ले गया।
3: Meanwhile, CNG prices have gone up yet again in Delhi NCR, with IGL announcing a hike of 3.89 rupees per kilogram effectively from 6 a.m. Today. That takes the CNG prices in Delhi from 83.09 to 86.98 per kilogram. IGL says the revision comes amid sharp rise in international gas cost as the West Asia crisis disrupts LNG supplies and pushes up input cost. IGL says rising CNG demand has also increased the need of a for imported gas. Despite the hike, IGL maintains Delhi continues to have one of the most economical CNG prices and says it remains committed to keeping CNG competitive and ensuring reliable supplies. Meanwhile, opposition leaders have slammed the government and said there is no end to inflation issues. The CNG is almost as expensive as petrol, and this is coming at a time when onion and sugar prices are already up.
4: Price of CNG has been hiked by rupees 3.89 in Delhi. We're right now at Pragati Maidan near a CNG pump. We're showing you the visuals from early morning today where people are standing in queue to get their tanks filled. We'll speak to some more people here who are joining us. Sir, kya naam hai aapka?
5: Dhuru Pathak, abhi to bataya tha.
4: Sir, dekhiye daam jo hai wo 3 rupaye badh gaye hai CNG ke. Kitni takleef?
5: 4 rupaye badha hai. Hum log bahut zyada dikkat pareshani hai. Kya kare? 400-500 रुपये सी एन जी में दे देते हैं, 500 रुपये गाड़ी के दहरी दे देते हैं, 1000 कर दीजिए, 1000 रुपये जो सारे दिन में काम होता है, सवारी मीटर का पैसा नहीं देती है, क्या करेंगे, किसी तरह बच्चे पाल रहे हैं।
4: सो करेंटली पीपल आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड गिवन द डेवलपमेंट हियर टुडे, वी विल स्पीक टू फ्यू मोर पीपल। सर आपका नाम क्या है?
6: नरेश महतो।
4: सर हम देख रहे हैं जो सी एन जी के दाम है वो 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, कितनी तकलीफ हो रही है?
6: बहुत तकलीफ है, हाँ बहुत तकलीफ है भाई, सवारी 1 रुपया देता नहीं है।
4: We're trying to show you the current price that has been reflected at the CNG stations here. The current price now stands at 86.98 per kg, up from 83.09 per kg earlier. CNG is mostly used in private cars, autos, taxis and other public transport. Now with international LNG prices remaining elevated and cost impact becoming increasingly significant, a calibrated revision of 3.89 per kg has become necessary to partially offset the increase of input gas cost is what the IGL has gone on to say. Also what we are given to understand according to company, while international gas benchmarks doubled over recent months, retail prices in Delhi experienced only a minor single digit percentage increase. Delhi CNG rose gradually from 77.09 per kg to 83.09 per kg, representing 7.8% increase. Also the adjustment comes as a global spot LNG prices nearly doubled due to escalating conflicts in West Asia.
7: सी एन जी का 4 रुपये बढ़ना, महाराष्ट्र बॉम्बे से खबर आ रही है कि दूध के दाम करीब 9 रुपये बढ़ना, अंडे के दाम अभी कुछ दिनों पहले आया कि अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, ये तमाम उन चीज़ों के दाम बढ़ना जो पब्लिक को रोज़मर्रा इस्तेमाल करनी है, उससे पूरा का पूरा मिडिल क्लास का बजट हिल गया है और सरकार उसकी तरफ दिख नहीं रही है। एक तो सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, मगर अगर आप सीएनजी इस्तेमाल करने वाले ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स से बात करोगे तो वो कहेंगे सीएनजी के अंदर भी ये कोई गैस मिला रहे हैं, बायोगैस मिला रहे हैं।
8: देखिए पूरे दुनिया के जो अभी हालात हैं, हरमुज स्ट्रेट बंद है और अमेरिका और ईरान के बीच की जो तनातनी है उससे पूरे विश्व के बाज़ार पर असर होता है, उसका असर भारत पे भी होता है और उसके जब सीएनजी की कमी होती है क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं तो दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ी कीमत बढ़ी है। जब ये सब नॉर्मल होगा तो कीमत घटेगी भी।

0: महंगाई का तो मर नहीं बोलने वाले हैं मोदी जी। जब विपक्ष में थे तभी महंगाई की बात करते थे, बिना वजह दाम बढ़ते जा रहे हैं और बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और सरकार को अपने खजाना भरने के लिए डीजल पेट्रोल से इतना कमाया उससे पेट नहीं भरा, सीएनजी से लूटेंगे और जनता के जेब पर डकैती है। इसको रोल बैक करना चाहिए और जो भी एक बार बढ़ जाता है जिसका दाम उसका कम नहीं होने का नाम लेता है। अब इस समय चीनी की आवश्यकता है, त्योहार पड़े हुए हैं, लेकिन चीनी का दाम आसमान में है। चीनी की कमी नहीं है, सरकार का असफलता है।
1: सो प्राइस हैज बिकम ए शॉकिंग रियलिटी इन आवर कंट्री, नॉट ओनली इन दिल्ली, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। And under BJP regime, I think life has become miserable. This can be termed as a Raksha Bandhan time gift by the union governments and Delhi governments. Yesterday we all celebrated Raksha Bandhan in a bigger way. I mean the whole nation who believes in this. And this is a response of the government. So this is a gift by the government of India and Delhi government to the common man.
2: ఎన్జీ ప్రైసెస్ వన్స్ అగైన్ రైజ్, కేజీ 3.89 రూపీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సింగిల్ టైమ్, విత్ ఇన్ ది 7 or 8 months, దీస్ ఆర్ ది థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ టైమ్ ది గవర్నమెంట్ యూజింగ్ వెస్ట్ ఏషియా వార్ టు ఎన్హాన్స్ ది ఫ్యూయల్ రేట్స్, ది పెట్రోల్, డీజిల్ అండ్ ఎల్పిజీ అండ్ నౌ సిఎన్జీ. The international market now it is decreasing, but the government is increasing the rates, and also the government is not deciding, the oil company is not deciding according to the international prices.
3: All right, that's all the time that we have in this edition. News and updates will continue here on NDTV. Thank you so much for being with us.
4: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
5: अरे मेरे राजा।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
8: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू, Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: मैं समय और श्रवण मैडम को कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों की बात उतनी ही करनी चाहिए जिससे उनको फायदे की बात हो, कहीं पत्थरबाज ना कहलाया जाए या उनको इस किस्म का एक्टिविस्ट ना कहा जाए। हम मेन स्ट्रीम के रहने वाले लोग हैं।
1: देखिए, कुछ समाज में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझकर के इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स करते हैं। उसके पीछे उनका मकसद केवल और केवल प्रसिद्धि पाना है। और अब हमें तय करना होगा कि सनातन हिंदू धर्म के देवी देवता या कश्मीरी पंडित, ये सारे मजाक का विषय नहीं बन सकते। तुम पहले कुछ भी करोगे, बाद में कहोगे मैं माफ़ी मांग रहे, उसके बीच में जो भी इन्हें पब्लिसिटी चाहिए फ्री में पूरे देश भर में मिल जाती है। तो ऐसे लोगों को सामाजिक मंच से कड़ा शासन हो।
2: इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट अ मैन हु हिमसेल्फ इज़ अ विक्टिम ऑफ एथनिक क्लिनजिंग एंड जेनोसाइड ट्रिवलाइजेस द एथनिक क्लिनजिंग ऑफ हिज कम्युनिटी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही मेक्स मॉकरी ऑफ द हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ दिस कंट्री ऑल फॉर फ्यू आई बॉल्स, फ्यू मोमेंट्स ऑफ फेम, फ्यू लाइक्स। ही हैज़ नो बिजनेस, समय हैज़ नो बिजनेस टू मेक मॉकरी और द पेन फॉर द पीपल हु हैव बीन लिविंग इन एग्जाइल फॉर द लास्ट 36 ईयर्स, हु आर स्टिल अवेटिंग जस्टिस, हु हैव बीन विक्टिम ऑफ जेनोसाइड एंड एथनिक क्लिनजिंग।
3: Moving on, there is a row that has erupted over BJP MPs visiting the residence of 1984 Sikh riots convict Sajjan Kumar following his death. Nitin Nabin has summoned these MPs and told them that they should not have visited. Senior advocate and 1984 petitioner H.S. Folka has strongly condemned the visit by BJP MPs Kamaljeet Sehrawat, Ramveer Singh Bhiduri and Yogendra Chandolia as well. Folka says that BJP has always supported the victims' fight for justice and questioned the decision of the three MPs to offer condolences to Sajjan Kumar. He has also called for a boycott of the three MPs, saying that sympathy should be there instead be reserved for the victims and the families.
4: Sir, you've tweeted against the incident. You've even condemned the visit of the BJP leaders. If you could just walk us through your take on it.
5: You see, their action is against the party's line. Party's stand is very clear. Since last 42 years, since this massacre has happened, party has been supporting the victims, standing with the victims, demanding that the guilty should be punished and the victim should be given justice. Not only the BJP has been demanding it, but BJP actively participated in this fight for justice to the victims. I mean, my fight in 42 years, the BJP lawyers also appeared for the victims. Arun Jaitley ji appeared, Ravi Shankar Prasad appeared, and Madanlal Khurana, when he was the chief minister, he made me the advisor to the chief minister to advise him on these 84 cases. So BJP has been constantly been fighting for the justice to the victim and the guilty to be punished. Now these three MPs, their action is totally against the party lines, which is very clear since the last 42 years. So therefore, that's the reason that the party president reprimanded them for this.
6: उन्होंने कहा,
7: फुलका जी ने कहा, मैं भी उससे हामी भरता हूं क्योंकि अवॉइड करना चाहिए था। हालांकि ये तीनों लोग अपने निजी तौर पर गए क्योंकि एक बड़ी लोकसभा में से तीनों की लोकसभा कार्विन हुई है। तीनों की लोकसभा ओनली एक बड़ी लोकसभा से कट कर निकली है जिसमें सज्जन कुमार पहले सांसद थे। एक पड़ोसी होने के नाते से शायद ये तीनों लोग गए, परंतु याद करना चाहिए कि सज्जन कुमार वो था जिसने 84 के अंदर तीन सिखों को कत्ल किया था और सजा उनको मिली हुई है।
8: 1984 सिख कत्लेआम पर भाजपा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से सज्जन कुमार की मौत के बाद दिल्ली भाजपा के बड़े नेता तीन तीन एमपी कमलजीत सहरावत जी, दूड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी जाकर वहां आंसू बहा रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि इनको 1984 के पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनको दुख है उस कातिल के मारे जाने का, उस सज्जन कुमार के मारे जाने का जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों सुहाग उजाड़ दिए, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया, उसकी मौत पर ये मातम मनाने, दुख मनाने वहां पर जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए थी।
3: And well, that was all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Coming up next is ground report by my colleague Vishnu Som from flood ravaged Nepal.
9: Across the country,
10: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: पत्थरबाज ना कहलाया जाए या उनको इस किस्म का एक्टिविस्ट ना कहा जाए, हम मेन स्ट्रीम के रहने वाले लोग हैं।
1: कुछ समाज में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझकर के इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स करते हैं। उसके पीछे उनका मकसद केवल और केवल प्रसिद्धि पाना है। और अब हमें तय करना होगा कि सनातन हिंदू धर्म के देवी देवता या कश्मीरी पंडित, ये सारे मजाक का विषय नहीं बन सकते। तुम पहले कुछ भी करोगे, बाद में कहोगे मैं माफ़ी मांग रहे, उसके बीच में जो भी इन्हें पब्लिसिटी चाहिए फ्री में पूरे देश भर में मिल जाती है। तो ऐसे लोगों को सामाजिक मंच से एक कड़ा से कड़ा शासन हो।
2: इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट अ मैन हु हिमसेल्फ इज अ विक्टिम ऑफ एथनिक क्लिनजिंग एंड जेनोसाइड ट्रिवलाइजेस द एथनिक क्लिनजिंग ऑफ हिज कम्युनिटी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही मेक्स मॉकरी ऑफ the hard-working people of this country, all for few eyeballs, few moments of fame, few likes. He has no business, Samay has no business to make mockery or the pain of the people who have been living in exile for the last 36 years, who are still awaiting justice, who have been victim of genocide.
3: Moving on, there is a row that has erupted over BJP MPs visiting the residence of 1984 Sikh riots convict Sajjan Kumar following his death. Nitin Naveen has summoned these MPs and told them that they should not have visited. Senior advocate and 1984 petitioner H.S. Folka has strongly condemned the visit by BJP MPs Kamaljeet Sehrawat, Ramveer Singh Bhiduri and Yogendra Chandolia as well. Folka says that BJP has always supported the victims' fight for justice and questioned the decision of the three MPs to offer condolences to Sajjan Kumar. He has also called for a boycott of the three MPs, saying that sympathy should be there, instead be reserved for the victims and the families.
4: Sir, you've tweeted against the incident. You've even condemned the visit of the BJP leaders. If you could just walk us through your take on it.
5: You see, their action is against the party's line. Party's stand is very clear. Since last 42 years, since this massacre has happened, party has been supporting the victims, standing with the victims, demanding that the guilty should be punished and the victim should be given justice. Not only the BJP has been demanding it, but BJP actively participated in this fight for justice to the victims. I mean, my fight in 42 years, the BJP lawyers also appeared for the victims. Arun Jaitley ji appeared, Ravi Shankar Prasad appeared, and Madanlal Khurana, when he was the chief minister, he made me the advisor to the chief minister to advise him on these 84 cases. So BJP has been constantly been fighting for the justice to the victim and the guilty to be punished. Now these three MPs, their action is totally against the party lines, which is very clear since the last 42 years. So therefore, that's the reason that the party president reprimanded them for this.
6: Fulka ji ne kaha, main bhi usse हामी भरता हूं, क्योंकि अवॉइड करना चाहिए था। हालांकि ये तीनों लोग अपने निजी तौर पर गए, क्योंकि एक बड़ी लोकसभा में से तीनों की लोकसभा कार्विन हुई है। तीनों की लोकसभा उन्हीं एक बड़ी लोकसभा से कटकर निकली है, जिसमें सज्जन कुमार पहले सांसद थे। एक पड़ोसी होने के नाते से शायद ये तीनों लोग गए, परंतु याद करना चाहिए कि सज्जन कुमार वो था जिसने 84 के अंदर तीन सिखों के कत्ल किया था, उम्र सजा उनको मिली हुई है।
7: 1984 सिख कत्लेआम पर भाजपा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से सज्जन कुमार की मौत के बाद दिल्ली भाजपा के बड़े नेता तीन तीन एमपी कमलजीत सहरावत जी, दूड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी जाकर वहां आंसू बहा रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि इनको 1984 के पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनको दुख है उस कातिल के मारे जाने का, उस सज्जन कुमार के मारे जाने का जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों सुहाग उजाड़ दिए, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया। उसकी मौत पर ये मातम मनाने, दुख मनाने वहां पर जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी।
3: And well, that was all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Coming up next is Ground Report by my colleague.

0: था जिसने 84 के अंदर 3 सिखों को कत्ल किया था, उम्र सजा उनको मिली हुई है।
1: 1984 सिख कत्लेआम पर भाजपा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से सज्जन कुमार की मौत के बाद दिल्ली भाजपा के बड़े नेता तीन तीन MP कमल जी, सहरावत जी, दूड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी जाकर वहां आंसू बहा रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि इनको 1984 के पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनको दुख है उस कातिल के मारे जाने का, उस सज्जन कुमार के मारे जाने का जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों सुहाग उजाड़ दिए, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया। उसकी मौत पर ये मातम मनाने, दुख मनाने वहां पर जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए थी।
2: And well, that was all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Coming up next is ground report by my colleague Vishnu Som from flood-ravaged Nepal.
3: Across the country,
4: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait.

0: Ravi Shankar Prasad appeared, and Madanlal Khurana, when he was the chief minister, he made me the advisor to the chief minister to revise him on these 84 cases. So BJP has been constantly been fighting for the justice to the victim and the guilty to be punished. Now these three MPs, their action is totally against the party lines, which is very clear since the last 42 years. So therefore, that's the reason that the party president reprimanded them for this.
1: So
2: Phulka ji ne kaha, main bhi usse haami bharta hoon, kyunki avoid karna chahiye tha. Halanki ye teenon log apne niji taur par gaye, kyunki ek badi Lok Sabha mein se teenon ki Lok Sabha karvin hui hai. Teenon ki Lok Sabha only ek badi Lok Sabha se कट कर निकली है, जिसमें सज्जन कुमार पहले सांसद थे. एक पड़ोसी होने के नाते से शायद ये तीनों लोग गए, परंतु याद करना चाहिए कि सज्जन कुमार वो था जिसने 84 के अंदर तीन सिखों को कत्ल किया था और सजा उनको मिली हुई है.
3: 1984 सिख कत्लेआम पर भाजपा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. जिस तरीके से सज्जन कुमार की मौत के बाद दिल्ली भाजपा के बड़े नेता तीन तीन MP कमल जी, सहरावत जी, दूड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी जाकर वहां आंसू बहा रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि इनको 1984 के पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनको दुख है उस कातिल के मारे जाने का, उस सज्जन कुमार के मारे जाने का, जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों सुहाग उजाड़ दिए, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया. उसकी मौत पर ये मातम मनाने, दुख मनाने वहां पर जा रहे हैं. शर्म आनी चाहिए थी.
4: And well, that was all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Coming up next is Ground Report by my colleague Vishnu Som from flood-ravaged Nepal.

0: We has been constantly been fighting for the justice to the victim and the guilty to be punished. Now these three MPs, their action is totally against the party lines, which is very clear since the last 42 years. So therefore, that's the reason that the party president reprimanded them for this.
1: फुलका जी ने कहा मैं भी उससे हामी भरता हूं क्योंकि अवॉइड करना चाहिए था. हालांकि ये तीनों लोग अपने निजी तौर पर गए क्योंकि एक बड़ी लोकसभा में से तीनों की लोकसभा कार्विन हुई है. तीनों की लोकसभा उन्हीं एक बड़ी लोकसभा से कटकर निकली है जिसमें सज्जन कुमार पहले सांसद थे. एक पड़ोसी होने के नाते से शायद ये तीनों लोग गए, परंतु याद करना चाहिए कि सज्जन कुमार वो था जिसने 84 के अंदर तीन सिखों के कत्ल किया था. उम्र सजा उनको मिली हुई है.
2: 1984 सिख कत्लेआम पर भाजपा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. जिस तरीके से सज्जन कुमार की मौत के बाद दिल्ली भाजपा के बड़े नेता तीन तीन MP कमल जी, सहरावत जी, दूड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी जाकर वहां आंसू बहा रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि इनको 1984 के पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनको दुख है उस कातिल के मारे जाने का, उस सज्जन कुमार के मारे जाने का जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों सुहाग उजाड़ दिए, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया. उसकी मौत पर ये मातम मनाने, दुख मनाने वहां पर जा रहे हैं. शर्म आनी चाहिए थी.
3: And well, that was all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Coming up next is Ground Report by my colleague Vishnu Som from flood-ravaged Nepal.
4: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: which is very clear since the last 42 years. So therefore, that's the reason that the party president reprimanded them for this.
1: उन्होंने
2: फुलका जी ने कहा मैं भी उससे हामी भरता हूं क्योंकि अवॉइड करना चाहिए था. हालांकि ये तीनों लोग अपने निजी तौर पर गए क्योंकि एक बड़ी लोकसभा में से तीनों की लोकसभा कार्विन हुई है. तीनों की लोकसभा ओनली एक बड़ी लोकसभा से कटकर निकली है जिसमें सज्जन कुमार पहले सांसद थे. एक पड़ोसी होने के नाते से शायद ये तीनों लोग गए. परंतु याद करना चाहिए कि सज्जन कुमार वो था जिसने 84 के अंदर तीन सिखों को कत्ल किया था. उम्र सजा उनको मिली हुई है.
3: 1984 सिख कत्लेआम पर भाजपा ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. जिस तरीके से सज्जन कुमार की मौत के बाद दिल्ली भाजपा के बड़े नेता तीन तीन MP कमल जी, सहरावत जी, दूड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी जाकर वहां आंसू बहा रहे हैं, वहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि इनको 1984 के पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि इनको दुख है उस कातिल के मारे जाने का, उस सज्जन कुमार के मारे जाने का जिसने हजारों घर उजाड़ दिए, हजारों सुहाग उजाड़ दिए, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया. उसकी मौत पर ये मातम मनाने, दुख मनाने वहां पर जा रहे हैं. शर्म आनी चाहिए थी.
4: And well, that was all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Coming up next is Ground Report by my colleague Vishnu Som from flood-ravaged Nepal.
5: Across the country,
6: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.